0: जेकर सूतक मनिए सबते सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूत क्यों कर रखिए सूत पवैर सोए, नानक सूत के न उतरे ज्ञान उतारे तो ए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तंदूप, कन्नी सूत कन पहला इतवारी खाहे, नानक हंसाय आदमी बद्ध जम पुर जाए।

पंड होवे दोस्ती पंड हो चले रा पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजा पंड हो ही पंड उपजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले

0: दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

भक्ति दा मतलब सिर्फ मंगना नहीं हुंदा, कई बार जो कुछ मिलिया है ना उस लई शुकराना करना भी भक्ति है दोस्तों। तुसी सरवन कर रहे हो भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

0: होने तो सी सर्वन कार्य सी भक्ति संगीत ता प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन तुहानू सुनाने आ प्रोग्राम खेतीबाड़ी।
1: खेतीबाड़ी

होने तो से सुन रहे से प्रोग्राम खेती बाड़ी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन मिलके सरवन करते हैं मानस कान दा 72वां भाग।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी।

पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

आओ हुण तुहानू जानकारी दे दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स की। सवेरे 7:02 से तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोहनी सवेर, पंजाबी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम महक पंजाब की तुसी सुनोगे सवेरे 8:40 से। इस दे नाल ही सवेरे 9:02 से तुसी सुनोगे शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। इस अज तुसी दिपिन कुमार वालों शास्त्रीय गायन राग मियाँ की तूड़ी सुनोगे। इस चोना नाल तबले ते संगत कीती है पंडित

बाद दोपहर 2:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस च तुसी अमरजीत सिंह रिखियां दे गीत सुनोगे। दूजी सभा च शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे सदा बहार गीत। इस नाल ही शाम 4:30 बजे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। 5:30 बजे तुसी सरवण करोगे गुरवाणी विचार।

0: छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति। सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति, पुनः परीक्षायै अतिरिक्तशुल्कं न भविष्यति इति। भारतं श्वः आरभ्य ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। अद्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः करिष्यति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ ब्रिक्स सदस्य देशानां विदेशमन्त्रिणः पारस्परिकहितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यन्ति इति। लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला वर्यस्य नेतृत्वे एकं उच्चस्तरीयं भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलं भारत भूटान संबंधान सुदृढीकरणोद्देश्येन सह अद्य भूटानस्य यात्रां करिष्यति। एकपञ्चाशत् सदस्याः भूटान भारत संबंधानां विभिन्नेषु विषयेषु उभययोः प्रतिवेशिदेशयोः मध्ये सहयोगं संवर्धयितुं च चर्चां करिष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। यात्रावधौ प्रतिनिधयः भूटान देशस्य राज्ञा तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा च सह मेलनं करिष्यन्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः राज्यस्य जनान् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आह्वानं व्यावहारिकरूपेण प्रवर्तयितुं प्रार्थयत्। अनेन नागरिकेभ्यः इन्धनस्य उपभोगं न्यूनीकर्तुम् अनावश्यकं स्वर्णक्रयणं परिहर्तुं च आग्रहः कृतः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः निर्देशं प्रदत्तवान् यत् मुख्यमंत्रिणः मन्त्रिणाम् अन्ये च जनानां संख्या तत्क्षणमेव 50% यावत् न्यूनीकर्तव्यमिति। असौ प्रार्थयत् यत् राज्ये गृहात् कार्यं कुर्वन्तु इति। महिलानां सुरक्षायै संस्थागत समन्वयं सुदृढीकर्तुं राष्ट्रिय महिला योगेन दिल्ली आरक्षकैः सह एकं उच्चस्तरीयं समीक्षोपवेशनम् आयोजितम्। उपवेशनावधौ राष्ट्रिय महिला योगस्य अध्यक्षा विजया राहतकर इत्येषा समन्वितस्य पीडित केन्द्रितस्य च दृष्टेः आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवती। एषा अवदत् यत् महिलाभ्यः समयोचित समर्थनं न्यायञ्च सुनिश्चेतुं गृहहिंसा अधिनियमस्य अन्तर्गतम् आरक्षकयन्त्रस्य सुरक्षाधिकारिणाञ्च मध्ये प्रभावी सम्पर्कः आवश्यकः अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प अद्य चीनदेशस्य त्रिदिवसीया यात्रायै बीजिंग नगरं सम्प्राप्स्यति। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्यस्य च मध्ये बहुप्रतीक्षिते उपवेशने द्विपाक्षिकसम्बन्धानाम् अनेकेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति इति आशास्यते। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 82 अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जालंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दिया मुख खबरां। भारत 14 अते 15 मई नू ब्रिक्स विदेश मंत्रियां दी मीटिंग दी मेजबानी करेगा। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक तकनीकी ते पू राजनीतिक समेत सब तरह दियां चुनौतियां दा मुकाबला करन दे समर्थ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 3 मई नू हुई नीट यूजी 2026 प्रीख्या दे संचालन विच कथित बेनियामियां अते पेपर लीक दे संबंध विच एक FIR दर्ज कीती है। सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दे अधिकारियां नाल जुड़े 20 लाख रुपए दे कथित रिश्वतखोरी दे मामले विच 3 व्यक्तियां नू गिरफ्तार कीता है। भारत दे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश भर दियां अदालतां दे आधुनिकीकरण लई एक वेरवेसित योजना तैयार करन लई एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बनाउण दा ऐलान कीता है। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने सनअत अते व्यापार मंत्री दा

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोनी सवेर। नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब, हसता वसता रहे तुहाडा परिवार। ते लो जी, नवी सवेर दे हुने सोने वेले हुन वेला हो चुके है तुहाडी मन पसंदीदा शो प्रोग्राम सोनी सवेर दा। ते इस सोने सफर च दोस्तों मैं तुहाडी दोस्त शुभिता रवांगी जी तुहाडे नाल। दोस्तों, अक्सर ऐसा होंदा है ना जिंदगी च कि सवेरे सवेरे जदों असीं अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो दिमाग च किन्नियां गल्लां चल रही होंदियां ने। कोई अपने कम काज बारे सोच रहा होगा, कोई अज दे कई सारे प्लान्स बना रहा होगा कि अज मैं की करना है टू डू लिस्ट, तो कोई हाले भी यही सोच रहा होगा कि होर 5 मिनट सो लीए। पर दोस्तों, जे दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव विचार, सोहने सोहने गीतां ते रब दे नाम नाल हो जावे ना, तो दिन नू बहुत ही वखरा जिहड़ा दिल नू साडे सकून है वह मिलता है। क्योंकि कहिंदे ने कि जदों मन च चंगीआं गल्लां वसन तां दिन होर भी सोहना लगता है, ते रब दा नाम सानू अंदरों एक ताकत भी दिंदा है जिस नाल हर काम जिहड़ा है ना वो थोड़ा आसान जहा लगन लग पैदा है। इसलिए अगले 1 घंटे हुण 8 बजे तक सवेर दे तो असी करांगे तुहाडे नाल ढेर सारियां गल्लां बातां, तुहानूं सुनावांगे सोहणे सोहणे गीत, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी तुहाडे नाल इस प्रोग्राम राही असी शेयर करांगे। कुल मिला के तुहाडे मनोरंजन दा इस प्रोग्राम सोहणी सवेर च दोस्तों रख्या जाएगा पूरा पूरा ख्याल। तो बस तैयार हो जाओ इस सोहणी सवेर दे सफर लिए, क्योंकि सोहणी सवेर च गल्लां दा यह सिलसिला इंज ही चलता रहेगा। तो हुण वेला हो चुका है प्रोग्राम शुरू करन दा। प्रोग्राम च सब तो पहला गीत जड़ा सुना जा रहा है, बहुत ही सोहना जिहा गीत है, राहत फतेह अली खान की आवाज़ च तुहानू सुनावांगे। तो आओ जी फिर मिलके करदे हां इस प्रोग्राम की शुरुआत, अज दे सफर की शुरुआत इस प्यारे जिहे गीत दे नाल।

अनजाना अनजानी फिल्म जो तुसी राहत फतेह अली खान की आवाज़ च सुन रहे से बहुत सोहना जिहा गीत दोस्तों रूह नूं सुकून दिता इस गीत ने। तो जिस तरह के इस गीत दे बोल सी ना दोस्तों, तो कई बार साडे जिंदगी च भी कुछ ऐसा ही हुंदा है। साडे आस पास रब दियां बहुत सारियां नहमतां जिहड़ियां ने, बख्शिशां जिहड़ियां ने, वह हुंदियां ने, पर फर्क सिर्फ इन्ना है कि असी महसूस नहीं कर पाते। कई बार साडी जिंदगी च इस तरह का ही हुंदा है कि रब दियां जिहड़ियां बख्शिशां ने, उहदियां रहमतां ने, हर वेले साडे आले दुआले हुंदियां ने। दोस्तों कई बार किसी अपनी का साथ, किसी की दुआ,

या मुश्किल वेले अचानक मिले जड़ा हौसला है ना दोस्तों, ये सब भी तो रब दे रूप ने ना। पर दोस्तों असी अक्सर अपनिया परेशानियां च इन्ना ज़्यादा उलझ जाने ना कि उन्हां चंगियां गल्लां नूं असी महसूस ही करना भूल जाते हैं। तो इस गल दे नाल अज दा जड़ा शुभ विचार है उहदे बारे भी गल कर लैंदे हां। अज दा जड़ा पॉजिटिव थॉट है, कहिंदे ने कि जदों असी जिंदगी च शुकराना करना सीख लैंदे हां ना, तां सानूं हर छोटी चीज़ च वी रब दी मेहर नज़र आउण लग पैंदी है। दोस्तों हर वेले यह नहीं सोचना चाहिए सानू कि साढ़े कोल की नहीं हैगा। कई वारी यह वेखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि साढ़े कोल पहला तो कितना कुछ मौजूद है। प्यार करन वाले लोग साड़ी जिंदगी च ने, असी तंदुरुस्त हाँ, साड़ी सेहत ठीक है, एक नवा दिन सानू मिलिया है कुछ नवा करन दे लई। यह भी सब तो बहुत सारिया वड्डिया नेमता ही ने ना दोस्तों। इसलिए हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव सोच ते शुकराने दे नाल करिए, फिर वेखो दिन किन्ना सोहना लगेगा। तो जिहड़े आस पास साडे लोग ने ना, कहिंदे ने उन्हां च ही रब वसदा है। तो जेकर असी किसी का दिल ना दुखाइए, किसी नूं खुश कर दईए अपने जिहड़े व्यवहार दे नाल, तां फिर दोस्तों रब अपने आप ही खुश हो जाता है। तो लो जी, हुण इस प्रोग्राम सोहणी सवेर च इस सोहणी गल दे नाल आओ सुनदे हां एक होर प्यारा जिहा गीत गुरदास मान, मास्टर सलीम, जसपिंदर दी आवाज़ च। लो जी, तुसीं भी सुनो इस सोहणे जिहे गीत।

नारायण जी नू जिन्हां दी अज डैथ एनिवर्सरी है। दोस्तों आर के नारायण जी का जन्म सन 1906 चेन्नई च होया सी ते उन्हां नू भारतीय साहित्य दे सब तो महान लेखकां चो एक मनिया जाता है। उन्हां दीआं जिहड़ियां कहानियां जिहड़ियां सी दोस्तों ओ सब तो वड्डी खास गल इह सी उहदे च कि ओह आम लोकां दी सधारण जिंदगी नू बड़ी सोहणी ते दिल नू छूण वाले तरह तरीके दे नाल जिहड़ी सी ना ओह लिखदे सन। दोस्तों उन्हां ने मालगुड़ी नाम दा एक काल्पनिक शहर बनाया जो उन्हां दीआं कहानियां दा हिस्सा बनिया ते अज वी लोग जिहड़े ने ना ओह मालगुड़ी रीस नू बहुत प्यार नाल याद करदे ने। खास तौर ते जिहड़े पुराने समें दे लोग ने उन्हां नू ते बहुत चंगी तरह जिन्हां ने ओह शोज़ देखे ने बहुत चंगी तरह उन्हां नू याद होगा। लेकिन क्यों ना असीं अज दी जिहड़ी साडी जनरेशन है जिहड़े तुहाडे बच्चे ने या फिर जिहड़े हुण जिहड़ी जनरेशन है उन्हां नू वी उन्हां दी इह जिहड़ा मालगुड़ी रीस नू जिवें उदा प्यार मिलिया सी उस वेले उदा दा प्यार हुण वी मिलिया जरूर मिले। नाल दे नाल दोस्तों जेकर असीं अगे वधीए ते गल करिए उन्हां दी लिखत बारे ते उन्हां दी लिखत च सादगी सी जज्बात सन ते आम इंसान दी जिंदगी दी सच्चाई सी। शायद इस वजह दे नाल ही उन्हां दीआं जिहड़ियां कहानियां ओह हर उम्र दे लोकां नाल जुड़ जांदियां सी। दोस्तों 13 मई यानी कि अज दा दिन उन्हां दा देहांत हो गया सी पर उन्हां दीआं लिखतां अज वी लोकां दे दिलां च जिंदा ने ते उन्हां दी जिंदगी दोस्तों सानूं इह सोहणा सुनेहा दिंदी है कि वड्डियां गल्लां करन नाल हमेशा वड्डे शब्दां दी लोड़ नहीं हुंदी। जदों असीं कोई वड्डा काम करदे उहदे लिए सानूं वड्डे शब्दां दी लोड़ नहीं हुंदी सगों सच्चाई ते सादगी वी लोकां दे दिलां तक पहुँच जांदी आपणे आप। खास करके अज वी अज दी जिहड़ी नवीं पीढ़ी है उहनां दी जिंदगी इह सानूं सिखांदी है उहनां नूं इह सिखण दी लोड़ है उहनां दी जिंदगी तों कि जेकर इंसान अपनी विचारां नूं ईमानदारी नाल पेश करे तां उह दुनिया ते डूंघा असर छड्ड सकदा है। ते हुण इसी सोहणी गल दे नाल दोस्तों प्रोग्राम सोहणी सवेर च अगे वधदे आं ते सुणदे आं इक होर सोहणा जिहा गीत किशोर कुमार दी आवाज़ च।

0: जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बिल्कुल जी, एक ऐसे गगन के तले। तो ये दोस्तों हर कोई जानता है, क्योंकि देखो जड़े पुराने गीत थे ना, उन्हें अपना ही एक एहसास है अपने कुछ जज्बात ने, तो सुन के बहुत सोहना लगता है सवेरे सवेरे जो अजिहे आप सोंग सुनते हैं। तो आकाशवाणी रेडियो की भी यही कोशिश है कि असं तुहानू कुछ यहो जि इनवायरमेंट जोड़ा थोड़े लिए बनाइए, तुहानू कुछ यहो जि प्रोग्राम से जानकारियाँ या गीत सुनाइए जिद दिन जोड़ा है वह होर भी सोना बन जाए। प्रोग्राम सोनी समीर च इंज ही गल्लां बातां दा जिहड़ा सिलसिला है वो असीं जारी रखांगे। बहुत सारिया जानकारियां हले होर ने जिहड़ियां तुहाडे नाल इस प्रोग्राम राहीं आपां शेयर करनी है। तुसीं बने रहना साढ़े नाल आकाशवाणी रेडियो ते। ते फिलहाल हुण वेला है जी एक छोटे जिहे अंतराल दा, मिलदे हां एक छोटे जिहे अंतराल तों बाद।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे दोस्तों।

फिल्म बंटी और बबली जो बहुत सोहना जहा गीतों से इंजॉय कर रहे सी। तो बिल्कुल जी हुण असी अगे वध रहे हां प्रोग्राम सोहनी सवेर च। तो जिवें कि गल कीती सी कि मौसम बारे कि अगों गर्मी जिहड़ी है वधेगी, तो उहदे करके दोस्तों गर्मी च ना डाइजेशन जिहड़ा यानी कि साडा जिहड़ा पाचन रोट जो असी खाने हाँ जो सा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जोड़े ना इशूज़ होने लग पे ने गर्मिया की वजह न खराब डाइजेशन हो जाता है। तो नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि गर्मिया जोड़ा डाइजेशन है वो अक्सर खराब क्यों होंगे वो पिछले वजह नहीं समझ आती लोगों सिर्फ वो पिछे दोस्तों खाण पीन जो आप खाने हाँ गलती वो नहीं बल्कि साडी जोड़ी बॉडी है वो अंदर कई सारे चेंजेस होंगे ने जो टेंपरेचर जोड़ा है वह वधदा है यानी कि बाहर इनवायरमेंट चेंज होएगा तो अल्टीमेटली साड़ी बॉडी दे विच भी चेंजेस होंगे। डीहाइड्रेशन है।

बिल्कुल जी महालक्ष्मी अयर हार्डकोर ते जस्सी दे वास्ते तुसी एंजॉय कर रहे सी जी। गीत प्रोग्राम चल रहा है सोहनी सवेर ते दोस्तों असी गल कर रहे सी कि वो छोटी छोटिया टिप्स दे बारे कि जिदे करके असी गर्मी तो बच सकते हैं। तो दोस्तों एक होर छोटी जी टिप जिहड़ी है वो जांदे जांदे तुहाडे नाल शेयर करांगे कि प्याज जिहड़ा ना कच्चा प्याज जेकर तुसी खाओगे ते इस सीजन च स्पेशली गर्मियां च ते लू तो बचाव जिहड़ा ना वो साडा हो सकता है। ते दोस्तों हुण जिहड़ी घड़ी दियां सुईयां ने ना वह हुण कह रही ने कि तुहाडे तो इजाज़त ली जाए इस प्रोग्राम च। उम्मीद करते हैं कि अज का यह जिहड़ा प्रोग्राम सोहनी सवेरे तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट लेके आया होवेगा। तुहानू जिहड़ी जानकारी आपां दित्ती है वो तुहाडे लई इनफॉर्मेटिव रही होगी। इस सफर च जिहड़ियां गल्लां बातां सोहणे सोहणे गीत असीं तुहाडे लई प्ले कीते ते कुछ पॉजिटिव विचार तुहाडे नाल जिहड़े शेयर कीते। उम्मीद है कि तुहाडे दिन नूं होर भी खूबसूरत इन्हां ने बनाया होवेगा। दोस्तों जिंदगी हर रोज़ सानू एक नवा मौका दिंदी है कुछ चंगा सोचन दा, कुछ चंगा करन दा ते खुश रहन दा। अज दी अखीरली सोच बस आपां तुहाडे नाल इही शेयर करनी है कि जेकर मन च उम्मीद ते चेहरे ते मुस्कुराहट बनी रहे तो औखे जिहड़े दिन ने ना जेकर साडी जिंदगी च कुछ भी औखा फेस चल रहा है वह आसानी नाल लंघ जांदा है। रब करे तुहाडा अज दा जिहड़ा दिन है ये खुशियां तंदुरुस्ती ते चंगियां खबरां दे नाल भरिया होवे। चढ़दी कला च रहो तुसी सवारे ते मैं तुहाडी दोस्त शुभता हुण इसी गल दे नाल तुहाडे तों प्रोग्राम सोहनी सवेर चों लैनी आ इजाज़त। मिलदे आ फिर एक नवी सवेर दे नाल, तद तक लई तुसी बने रहना जी आकाशवाणी रेडियो ते। फिलहाल सुनो जांदे जांदे शंकर महादेवन ते चौरस देवास च इस सोहना जिहा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्ण मूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से

0: जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील।

0: चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के

0: सेंगू में इटली को पराजित किया। वहीं आठ भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और चार ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है, सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। तमिलनाडु में जोसफ विजय की अगवाई वाली टीवीके सरकार ने आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। राज्य में सियासी गतिविधियां तेज हो गई ने। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। सरकार ने सोने ते होर कीमती तातां ते दरामदी महसूल वधा दिता है। भारत में दक्षण पछमी मानसून के इस हफ्ते आने की संभावना है। भारत का लक्ष्य फोगाट ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचा। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद से गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 दौड़ों से हरा दिया है। हुण खबरां विस्थार नाल। तमिलनाडु में जोसफ विजय की अगवाई वाली नवी चुनी गई टीवीके सरकार ने आज विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना है। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय विधानसभा में विश्वास वोट तो पहले समर्थन हासिल करने लई सहयोगी पार्टियां दे नेतावां नाल मीटिंग कर रहे हैं। सहयोगियों के समर्थन तो अलावा टीवीके सरकार को AIADMK तो वक् हुए धड़े की हिमायत भी प्राप्त हुई है। टीवीके ने हुण विधानसभा में लगभग 150 विधायकों का समर्थन हासिल है। इस दौरान कल तमिलनाडु में सियासत ने उस समय नाटकी मोड़ ले लिया जदों ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK सरकार का समर्थन कर या ना करन नूं लैके दो धड़ियां विच वंडी गई। साबका मुख्यमंत्री ते पार्टी के जनरल सकत्तर AK पलानी स्वामी की अगवाई वाले धड़े ने पार्टी विधायकों TVK सरकार का समर्थन ना करन की हदायत की है। सीनियर नेता अग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी विप की उलंघना करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। उधर 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूजे धड़े ने SP वेलुमणी AIADMK विधायक दल का नेता चुनिया है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम पेश करन जा रहे हैं जी महक पंजाब दी पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे। इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत सुनान जा रहे हैं तुहानू अमरिंदर गिल दी आवाज़ च फिल्म गोरियां नू दफा करो। चलो जी तुसी भी इंजॉय करो इस सोहना जिहा गीत।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार

गलबात सी पर तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुहे जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औरात सी पर तू ना समझ सकी।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी महक पंजाब दी। अगला गीत सुनान जा रहे हैं फिल्म दिल विल प्यार व्यार चों गुरदास मान ते जस्सी गिल दा गाया हुआ गीत। लो जी करो एंजॉय।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने अज दियां मुख खबरां। तमिलनाडु विच जोसफ विजय की अगुवाई वाली TVK सरकार नू अज विधानसभा विच अपना बहुमत साबित करना है। राज विच सियासी गतिविधियां तेज हो गई ने। ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगा सामी अज पुडुचेरी दे मुख्यमंत्री वजों सहु चुकणगे। सरकार ने सोने अते होर कीमती धातां ते दरामदी महसूल वधा दिता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले के संबंध में शुभम खैरनार नू हिरासत विच लिया है। सरकार ने कुल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP दे सालाना अते चौथी तिमाही लई अनुमान जारी करन दी तारीख विच सोत करदिया हर साल मई दे आखिरी कामकाजी दिन तो बदल के 7 जून कर दिती है। महाराष्ट्र दे सांगली जिले विच एक धार्मिक समारोह दौरान भारी मीह ते हनेरी दे चलदिया कंध डिगन कारण 6 श्रद्धालुआं दी मौत हो गई अते लगभग 15 होर जख्मी हो गए। माता भद्रकाली जी दा मेला अज कपूरथला दे पिंड सेखुपुर विखे पूरी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। भारत विच दक्षण पश्चिमी मानसून दी दे इसे हफ्ते आउण दी संभावना है। भारत दा लक्ष्य फुगाट उज़्बेकिस्तान दी ताशकंद विच एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप विच 75 किलोग्राम वर्ग दी फाइनल विच पहुंच गया है। अते IPL क्रिकेट विच अहमदाबाद च गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद नू 82 दौड़ां नाल हरा दिता है। एसन अज दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे हैं शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना।

इस गीत तो बाद देख दें कि अगले गीत की फरमाइश किन्ने कीती है जी। प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा करुणा वर्मा दा, पिंड ककराली जिला पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य अंजलि नेहा गुरमीत कौर अते शुभम ते नाल ही लवली प्रजापति दा। अगला मैसेज लिखते ने रिम्पी सिंह पाल सिंह सलीम खान तनवीर कौर पिंड पहेड़ी तहसील अलमो जिला फतेहगढ़ साहिब तो, मंडी डबवाली तो राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित लकी तानिया नारंग। ते अगला मैसेज आया जी वासुदेव छाबड़ा अंश दिवानशी चिराग साजन छाबड़ा दा मंडी तो, चौटाला हरियाणा तो लिखते ने दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा, पिंड डाखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। ते अगले साथी ने सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान जय नारायण चौहान तरुण चौहान अते प्रतीक चौहान। अगला मैसेज आया जी पिंड बुरज मानसा नेड़े मोड़ मंडी जिला बठिंडा तो राम सिंह तग्गड़ पिंदर कौर तग्गड़ कमलप्रीत सिंह तग्गड़ा, मंडी मोड़ मंडी तो गुरजीत मानसा कला मलगीत मान गुरतेज कैंत पिंड जलूर तो मंगू राजस्थानी मोड़ मंडी तो तगड़ फैमिली, उपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर तो मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन अब्बासी शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान अते, अगला मैसेज लिख देने बूटा सिंह मान अमरजीत कौर मान गुरप्रीत सिंह मान महिंदर पट्टी मंडी कला तो, तलवंडी साबो तो मैसेज आया जी। अगला मैसेज है मुजफ्फरपुर बिहार तो आर्यन राज रोहित कुमार अते पीयूष कुमार दा, जसपुर उत्तराखंड तो लिखते ने रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज अते रिफाकत, भादुवाली ढानी तो टेक चंद चारण संतोष देवी सत्य प्रिय चारण जय सिंह चारण योगेश्री रणजीत सिंह सुथार गुरदेव सिंह भगानिया हरनेक सिंह भगानिया अते कृष्ण लाल राहड़, पिंड चांदवरी तो मंगत राम जगदीश रानी संदीप मिद्दा ममता रानी अभिषेक मिद्दा अते दिव्या, सुखदेव सिंह नरेंद्र कौर सन्नी मन्नी काका बिट्टू लाडी मोहन जनक नगर जलंधर तो। ते अगला मैसेज आया जी कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बट्टा नीलम बट्टा नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक अते वंश बट्टा दा, आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां गुरदास मान दी आवाज़ विच।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च अगला मैसेज शामिल करदे आं। यह मैसेज आया जी राकेश नरेश जगदीश अंग्रेज भट्टी नछत्र सिंह दा जंडवाला चरण जंडवाला तो।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाली यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन सुनदे आ प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: जी
1: ते शिकायत भी की, वो खपतकार आप ही दर्ज करवाउंदा कि जाके इसका सहारा लेना पैंदा।
0: एच जी बड़ा सिंपल प्रोसीजर हैगा जी, ये वो एडवोकेट की सहायता भी ले सकता तो खुद भी कंज्यूमर कोर्ट से जाके कर सकता।
1: जी
0: ये सानू साढ़े जरा लॉ हैगा उन्हें सानू ऑनलाइन तो ऑफलाइन प्रोसीजर दिता है। ऑनलाइन प्रोसीजर की होंगे जी, जागो ग्राहक जागो एक जड़ी वैबसाइट हैगी है, उसे विजिट करेंगे ना जिले
1: जी
0: तो उत्तर सूँ आई डी क्रिएट करनी पैंती है। आई
1: जी
0: डी क्रिएट करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जी, तो सूँ दसना पेगा आप किस तरह की सर्विस जी लीती सी उपभोक्ता ने, किन्ने का समान जो खरीदया सगा,
1: जी
0: तो कड़ा कि वरंटी सी, कि गरंटी सी, कोई रिसिप्ट सूँ मिली है, वो आप जाचिका लिख सकते हैं
1: जी
0: ऑनलाइन। तो
1: जी
0: दूसरा ये ऑफलाइन प्रोसीजर भी है जी। ऑफलाइन की होंगे बंदा

0: जी अपनी शिकायत दर्ज करवा
1: हाँ
0: सकता है।
1: जी
0: अच्छा एडवोकेट मोहित जसी मेरे वर्गा कोई खरीद के लाया
1: हाँ जी
0: है ना, उन्होंने चीज़ नूं वरत्या ही नहीं,
1: जी
0: 2-3 दिन बाद देखिया ते उहदे ते डेट लंघ चुकी है, ते जां फिर कंप्लेंट कोई पैकेट खुल्ला आ, ते जां ओह चीज़ ब्रांडेड नहीं है जिहड़ा ब्रांड सोच के मैं लिआंदी सीगी। ते फिर हुण मेरे दिमाग विच आया कि की कीता जावे। 4-5 दिनां बाद मैनूं याद आया कि नहीं जी, मैनूं ते उपभोक्ता अदालत दा दरवाज़ा खड़काउणा चाहीदा। किन्नी देर तक असीं वेट करनी है ते किन्नी देर दे विच
1: हाँ
0: विच
1: जी
0: असीं शिकायत दर्ज करवाउणी
1: हाँ
0: आ?
1: जी ये लिए जी साढ़े को 2 साल का टाइम होंगे जी। 2 साल के विच आप अपनी जी कंप्लेंट है जी दर्ज कर सकते हैं। ये 3 होंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन होंगे जी, स्टेट कमीशन होंगे जी, तो नैशनल कमीशन होंगे जी। ये 3 जगह पर आप अपनी कंप्लेंट पा सकते हैं। स्टार्टिंग आप स्टार्ट करनी है डिस्ट्रिक्ट कमीशन तो, ये 2 साल के विच आप पानी होंगी जी कंप्लेंट।
0: मान लो समान तो मैं खरीदिया पिछले साल,
1: हाँ जी
0: तो शिकायत मैं कराऊंगी इस साल
1: हाँ
0: दर्ज,
1: जी हाँ
0: तो
1: जी
0: मैनूं कोई की प्रूफ देना पवेगा उस वास्ते? कि चीज़ा कि डॉक्यूमेंट्स होंगे, की प्रोसीजर है जी कंप्लेंट
1: हाँ जी
0: करवाता?
1: जे जिले आप कंप्लेंट करना चाहते हैं जी, सानू तो पहला साढ़े को प्रोडक्ट होना चाहिए जो सा खराब हैगा जी, वो रिसिप्ट होनी चाहिए है जिदे थ्रू आप लिता जिद उत्ते लिखे जी इन्ने का प्रोडक्ट इस तरीक नूं बंदे ने लिता सी, वह कोई गरंटी कार्ड, वह कोई वारंटी कार्ड जो नाल सानू दिता गया
0: जी
1: वो लैके जाना पड़ेगा जी कंप्लेंट दर्ज कराने लिए।
0: जी कंप्लेंट दर्ज करवाने लई हुण साल पहलां खरीदी चीज़ तां साल बाद उहदी खराब हो जांदी है। की सारियां चीज़ां लई इक्को जी कंप्लेंट है कि जे खाण पीण दीआं चीज़ां दी शिकायत इन्ने टाइम दे विच करनी है, ते जे कपड़ा कोई खरीदे लिआंदा उहदी शिकायत इन्नी देर विच करनी है, ज्वैलरी है ते उहदी शिकायत इन्नी देर दे विच करनी है,
1: जी जी
0: फर्नीचर है जां इलैक्ट्रॉनिक गुड्स ने उहदी शिकायत इन्नी देर विच करनी है जी?
1: जी जी ये लिए जो फूड का होंगे जी, जो फूड होंगे वो पर्टिकुलर पिछे ही मैनशन होंगे जी, ये फूड जरा जी इन्नी देर ली मतलब सही रहेगा जी, वो कंप्लेंट आप उस टाइम के अंदर अंदर ही कर सकते हैं।
0: यानी कि वो उत्ते एक्सपायरी डेट लिखी होंगी
1: जी
0: है।
1: जी जी जी जी तो बाकी जो कपड़े हो गए, कपड़े लिए तो जे तुम कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लेंदे पे हो तो वो लैट का जरा की कहें अपना सैलर बिवेयर होना चाहिए जी। पहला होंगे कि सारी ग्राहक के उत्ते अपना जिम्मेवारी से ना ग्राहक के उपर छोड़ देंगे से कि सारा यही देखेगा, हूँ ये सिस्टम नहीं रह गया, हूँ साढ़े जरा लॉ हैगा साढ़े ग्राहकों के हक च आ गया जी। उन्होंने की किया लैट द सैलर बी बिवेयर, ठीक है जी। हूँ सैलर नूं पहला जरा प्रोडक्ट बना रहा उन्होंने पता होना चाहिए जी आ प्रोडक्ट है जी, ये क्वालिटी का प्रोडक्ट हैगा जी, तो ये ग्राहकों ने यूज़ करना जी। जे वो प्रोडक्ट नहीं उस क्वालिटी के खरा नहीं उतरता तो बंदा कंप्लेंट कर सकता, ठीक है जी। वो की होंगे जी जे सा कमीशन बैठे है कचहरिया वो चेक करते, क्वालिटी चेक करते किस तरह का प्रोडक्ट आ, जे जेकर उन्होंने पता लग जाता जी कि ये प्रोडक्ट जरा सही क्वालिटी का नहीं है तो 2 साल लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उस तो बाद भी जो बंदा नहीं हटता तो लाइसेंस पक्का ही रद्द हो जाएगा।
0: जी एडवोकेट मोहित जस्सी, ये नाल एक गल होर जुड़ जाती है, जदों आपां कोई कपड़ा खरीदन जाने हैं ना, ते एक तां वैसे ही स्याणे मुहावरा बोलदे हुंदे, सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार,
1: हाँ जी
0: तो कहिंदे ने कि भई चंगी चीज़ ही खरीद के लियाओ। जदों दुकान ते जाने आ ते फिर ओह कई वारी ना उत्थे लिख के लाया हुंदा, फैशन के इस दौर में गरंटी की इच्छा मत रखें है ना, बंदा उत्थे डर जांदा है। ते कई वारी जदों इलैक्ट्रॉनिक्स गुड लै के आंदा है, प्रेस खरीदी है उन्हें, तो जां कोई बिजली दा समान है जां इलैक्ट्रॉनिक गुड हैगी है, वो घर लिया के देखदा, चला के देखदा, चलदी नहीं है, ते जदों दुकानदार कोल वापस जांदा कहिंदे तुहानूं चलानी नहीं आंदी होनी,
1: ओके
0: वो साफ ही मुकर जांदे ने।
1: मुकर जाते
0: कितने हालात विच की कीता जावे?
1: अजिहे हालात में जी गाहक नूं पहलां तां घबराना नहीं चाहिए जी, क्योंकि उन्हें पैसे दित्ती अपनी चीज़ हुण लैनी लैनी है, नहीं चली उन्हें दुकानदार जाके पुछेगा ना जी,
0: जी
1: तो ये उन्हें घबराने की लड़ नहीं, वो कचहरी का दरवाजा खड़का सकता है आराम नाल जाके, कंज्यूमर कोर्ट जाके जी वो रेमेडी चाहते ने वो लै सकते हैं
0: जी जिहड़ी कि जो भी सहूलत चाहते ने उस
1: सहूलत
0: सहूलत
1: चाहते
0: उन्हां नूं मिलेगी।
1: जी जी
0: इस कंज्यूमर कोर्ट दे मुख उद्देश की ने?
1: हाँ जी। यदा जो एक्ट हैगा जी वो इटसैल्फ सानू दसदा हैगा कि ये मेन ऑब्जेक्ट की हैगे ने। पहला यह है कि कंज्यूमर का इंटरस्ट जरा ना उन्होंने प्रोटेक्ट करना, गाहकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना ताकि कोई इसी तरह का धक्का ना हो। दूजी गल हैगी है यह मेन ऑब्जेक्ट है कि अथॉरिटी बनानी एस्टैब्लिश, एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करनी है जरा कि रेगुलेट करे,
0: जी
1: देखे सारे कंज्यूमर कंप्लेंट्स जी आ रही हैं वो अथॉरिटी देखे। अगली गल हैगी है लास्ट गल जी ये मेन हैगी है कि सारे जोड़े डिस्प्यूट है उन्होंने टाइमली सैटलमेंट हो जाए ताकि कल जो गाहक है ये ना कहन कि आप कंप्लेंट पानी सी पाई जी कंप्लेंट पाई हैगी है उन्होंने काफ़ी टाइम तक उन्होंने देखे नहीं गया, सॉर्ट आउट ही नहीं किया गया। कंज्यूमर कोर्ट के मेन मुख्य उद्देश्य है गया कि किदा आप उन्होंने प्रोटेक्ट करना, ठीक है जी, उन्होंने फायदे बारे कि
0: ग्राहक दे फायदों बारे।
1: ग्राहक के फायदे बारे चीज़ा बनाई गई कि कल नू जे ग्राहक नू किसी तरह की तंगी होंगी है वो उन्होंने को अपना रेमडी लै सके।
0: जी हुण तुसीं आपां जदों फूड दी गल कीती सी, खाने दी गल कीती सी, इहदे वास्ते शायद कुछ क खपतकारां दे वी हक ने, उहनां नूं वी जागरूक होणा बणदा जी। कुछ इस तर्हां दा है कि जद ओह कोई चीज़ खरीदण जांदे ने तां उहनां नूं किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दी जागरूकता होणी चाहीदी है, किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दी नॉलेज होणी चाहीदी?

0: हाँ जी, एक तो जी जिसले गाहक अपना कोई चीज़ लैन जाता उन्होंने इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए लैन के जा रहा है किस तरह की क्वालिटी डिमांड कर रहा, तो जेकर वो पूरा जरा जरा दुकानदार हैगा वो तो डिपेंड हो जाता है, महाराज मैनू ये समान हैगा जी इस तरह का चाहिए, मैं ताड़े डिपेंड है, मैनू नहीं पता कि तुम कट के दे दौ, फिर वो जरा सैलर हों जो दुकानदार वो पूरा उ लाइबल होएगा जी,
1: जी दोषी वही हो गया।
0: दोषी होएगा जी, क्योंकि बायर नू तो पता नहीं, उन्हें अपनी रिस्पोंसिबिलिटी उन्होंने दे छी कि भाई तू देख ला मैनू नहीं पता है। जेकर बायर जरा हूँ दुकान पर गया जी हूँ खुद चक के चकदा आ चीज़ मैं लैनी है जी, हूँ गाहक जो दुकानदार होगा वो तो कहेगा जी लैजो जी।
1: ओदा फर्ज बनता है कि एक्सपायरी डेट
0: हाँ
1: देखे
0: जी हाँ जी
1: कदों
0: जी जी जी
1: मैन्युफैक्चरर
0: जी
1: ये है
0: हाँ
1: ना।
0: जी हाँ जी, ये जड़े ना जरा उपभोक्ता हैगा वो ड्यूटी बनती हैगी
1: जी भी सारा कुछ चंगे तरीके
0: चेक
1: चेक करे
0: करे।
1: ये ओदा फर्ज बनता
0: हाँ
1: है
0: जी
1: जी,
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: आप उसी कह सकते हैं। हुण गल आउंदी है दवाइयां दी,
0: हाँ जी
1: डॉक्टर ने सानू दवाई लिख के दे दित्ती, असीं दवाई विक्रेता कोल दवाई लैण चले
0: हाँ
1: गए,
0: जी
1: तो उसने आख्या कि ये दवाई तो है नहीं, जिहड़ी ए दवाई है ना ये सारे साल्ट सेम ने, ये भी उन्नी ही वधिया, इक्वली गुड है, थोड़ी जी सस्ती है। पर जदों वो घर आंदा है दवाई लै आंदा है कि कहिंदे ने कि लोड़ वेले तो कुछ भी किया जा सकता है, पर वो दवाई असर नहीं करती, फिर डॉक्टर कोल जांदा, डॉक्टर ने कहा तुसीं ये दवाई क्यों नहीं ली, तो फिर की उत्थे जिहड़ा दवाई विक्रेता उदे खिलाफ भी अदालत विच जाया जा सकता है
0: हाँ जी
1: जी।
0: जरूर जाया जा सकता जी, ये उही सेम प्रोसीजर होएगा जी, ऑनलाइन तो ऑफलाइन प्रोसीजर हैगा, ये जिदा उन्होंने सहूलत लगती है वो जाके
1: जी
0: कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।
1: जी कंज्यूमर वास्ते उपभोक्तावां वास्ते की कुछ नवां भी आया जी, सरकार ने कोई फैसिलिटी नवीं दित्ती है जी।
0: हाँ जी काफ़ी फैसिलिटियां नवी आई हैं जी, जिवें कि पहला जड़े लॉ होंगे सी ना साढ़े
1: जी
0: 1986 के लॉ जरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जरा कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होंगी सी, मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी जिड़ी कि सारा कंज्यूमर दे केसा नू देखे, ठीक है जी। हुण 2019 नवा लॉ आया हैगा
1: जी
0: जिन्हों पर CCPA कहते हैं, वह मतलब हैगा जी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी।
1: जी
0: हुण इहदा ये की करती है जी, इहदा मेन काम है जी कोई भी चीज़ नू रिकॉल कर लेना, मार्केट चो किसी ने कंप्लेन की कि इदा जी प्रोडक्ट हैगा जी ये कुछ खराबी आ गई है जी, तो इदा इदा मैं कंप्लेंट की है तो वह मोड़ना नहीं पाया जा कोई गलत प्रोडक्ट हैगा मार्केट से, तो आ जी अथॉरिटी होंगी है ये प्रोडक्ट नू वापस ले सकती है, चेक करेगी जे उन्हें लगा कि गलत हैगा तो उन्होंने जब्त कर लेगी तो वो खिलाफ़ सख्त एक्शन लेगी।
1: जी
0: दूजा काम यह कर सकते जी जे किसी तरह की रोंग एडवरटाइजमेंट हैगी है, गलत मशहूरी जिदा आती ना कोई भी प्रोडक्ट की, हूँ जिदा किसी ने कहता जी ये टीवी हैगा जी LED ऑनलाइन बिक रहा जी, ऑनलाइन टीवी बिक रहा जी, तो 42 इंच का टीवी हैगा जी, जिले आप लिता तो वो निकलिया 30 इंच का 32 इंच का निकलिया, तो इस सिचुएशन भी आप एक्शन लै सकते हैं, ये अथॉरिटी एक्शन लै सकती है।
1: जी
0: दूजी गल जरा हूँ नवे एक्ट आई हैगी है कि पहला साढ़े ना कंज्यूमर कोर्ट नहीं होंगे सके, पहला कंज्यूमर कोर्ट जोड़े ना हूँ जिदा किसी ने उपभोक्ता ने कंप्लेंट पानी है तो सानू ना देखना पैंता सी दुकानदार कितने रहा जी, उत्थे जाके कंप्लेंट पाइए, नॉर्मल गल हैगी कोई भी कहेगा कि मैं नहीं जाना चाहता इन्हें कौन सिर खपाई करे, आप कंप्लेंट जी है रह नहीं दें।
1: जी
0: हूँ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते साढ़े जो नवा लॉ आया उन्होंने कहा जी तुम कंप्लेंट जिथे तुम रेंदे हो उतों ही पा सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए,
1: जी
0: ठीक है जी। पहला कोई अपना कंप्लेंट प्रोडक्ट की लाइबिलिटी लैनी है, लाइबिलिटी मतलब हो गया जी किसी तरह का हूँ कोई चीज़ लैनी है, आप क्लेम चाहते हैं तो सानू पर्टिकुलरली सिविल कोर्ट जाना पैंता सी, पहला सिविल कोर्ट जी कचहरी होंगी है उत्थे जाना पैंता सीगा,
1: जी
0: हूँ उन्होंने की किया कंज्यूमर कोर्ट बना दिते हैं,
1: जी
0: हूँ आप
1: उपभोक्ता अदालत
0: उपभोक्ता
1: स्पेशल।
0: अदालत बना दी है तो वो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं उन्होंने को, ठीक है जी। हूँ इन्होंने जी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन सीगियाँ, तुम्हें मैं दसा पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होंगी की है,
1: जी
0: पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होंगी है कि कि कोर्ट किन्ने अमाउंट का केस देख सकती है, ठीक है जी। ये पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सी 2000 जी 1986 ना वो 20 लाख का देख सकती सी,
1: जी
0: हूँ जेड़ा कि नवा अमेंड होके नवा लॉ जरा बनया ये 1 करोड़ तक देख सकती है जी, ठीक है जी। जरा स्टेट कमीशन सी जी वो 20 लाख तो लैके 1 करोड़ तक देख सकते थे, हूँ नवा जरा लॉ आया वो 1 करोड़ तो लैके 10 करोड़ तक देख सकते हैं जी।
1: यानी कि 1 करोड़ तो लैके 10 करोड़ तक का मुआवजा कंज्यूमर नू मिल सकता है,
0: हाँ
1: ते
0: जी
1: कोर्ट्स देख सकती
0: हाँ जी
1: हैं
0: कोर्ट्स देख सकती हैं,
1: जी।
0: ये नेशनल कोर्ट हैगी है। वो दे विच भी 1 करोड़ का पहला सीगा, हुण इन्होंने 10 करोड़ एंड अबव कह दिता है जी,
1: जी जी
0: तो इस तू भी जो बंदा परेशान रहा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता जी 30 दिनों के अंदर अंदर, जो इन्ह कोर्टों तो अदालत कोर्ट ऑर्डर आया तो ग्राहक कहता जी मैं नहीं सैटिस्फाई नहीं है तू, तो वो 30 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता।
1: जी
0: हूँ
1: ये सारा कुछ कंज्यूमर वास्ते नवा आया, पहला
0: नवा है,
1: नहीं सी
0: पहला नहीं सीगा जी,
1: जी।
0: पहला मेडिएशन सेंटर भी नहीं होंगे सी जी, हूँ मेडिएशन सेंटर भी आ गए जी, पहला 1986 जदों लॉ बनया सीगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड उदों उस हिसाब ना लॉ बड़ा वधिया सीगा, हुण जिदा जिदा साडी सोसाइटियां चेंज हो रही हैं नवे नवे ऑनलाइन चीज़ां लोकी लै रहे ने हुण नवी नवी प्रॉब्लम आ रही ने, हुण उन्हां नू चीज़

0: विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश है साडे अज प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

7:40 ते सुन सकोगे समाचार समीक्षा। ₹7:45 ते सुनना सीमा भाटिया दी वार्ता मेरी नई कहानी। रात 8 बजे का समा होगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा।

8:45 सुनना समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 चर्चा का विषय साढ़े दिल्ली केंद्र तों।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर के 1:10 हो रहे ने। आओ हुण सुनदे आ प्रादेशिक खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसीं गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों 12वीं जमात के नतीजे ऐलान दिए गए ने। मानसा की विद्यार्थन सुपनीत कौर पहले अते लुधियाणा दी विद्यार्थना सुहानी चौहान अते दिवानशी दूजे अते तीजे स्थान पर रही ने। सिक्ख्या बोर्ड के चेयरमैन अमरपाल सिंह ने वेरवे सांझे करदिआं दस्सिआ कि 3817 स्कूलों के 265417 विद्यार्थी इस प्रीख्या विच बैठे सन। उन्होंने दस्सिआ कि
2: इस प्रीख्या विच

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ विच। फिल्म का नाम है लुटेरा।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी
1: प्रोग्राम चल रहा है जी फौजी वीरां लई। इस प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर करदे आं फिल्म राजनीति दा। इस गीत नूं आवाज़ दित्ती है अंतरा ते मोहित चौहान ने।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: प्रोग्राम च अगला गीत सुनदे हां फिल्म ये जवानी है दीवानी दा, गायक ने रेखा भारद्वाज अते टोची रायना।

तमिलनाडु विच सी जोसफ विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु वेतरी कड़कम सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा विच भरोसे का वोट हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के हक विच वोट पाई जदों कि 22 विधायकों ने भरोसे के मते दे विरोध वोट की। सदन विच सरकार नूं स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। मुख विरोधी पार्टी DMK ने कार्रवाई दौरान विधानसभा विचों वाकआउट कर दिता। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलीकर ने श्री विजय नूं सदन विच अपना बहुमत साबित करने लिए कहा सी क्योंकि उन्हां दी पार्टी हाल ही विच होईयां विधानसभा चोणां विच सिर्फ 108 सीटां हासिल कर सकी सी। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी ने अज रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। लोक निवास विखे हुए एक समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने उन्होंने अहुदे ते सरकारी भेत गुप्त रखने की सहुं चुकाई। इस समारोह में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाडी कृष्णा राव और भाजपा के A नमा सिवियम ने भी मंत्री वजों सहुं चुकी। मौजूद लोगों में भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सकत्र संगठन BL संतोष, राज भाजपा प्रधान VP रामलिंगम, अधिकारी ते पार्टी आगू शामिल सन। सरकार ने सोने ते होर कीमती धातों ते दरामदी महसूल बढ़ा दिता है जो अज तो लागू हुए। एक बयान में खजाना मंत्रालय ने कहा कि सोने ते चांदी की भाल ते 5% जदों की प्लैटिनम की भाल ते 5.4% महसूल लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के घरेलू दौरों दौरान अपने काफले के आकार को काफ़ी घटा दिता है जदों कि विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल अधीन लाजमी सारे जरूरी सुरक्षा प्रबंधों को बरकरार रखा है। हलकियां मुताबिक प्रधानमंत्री के काफिले विच वाहनों की गिनती विच कमी उन्होंने गुजरात और आसाम के हालिया दौरों दौरान लागू की गई सी। एक कदम प्रधानमंत्री वालों नागरिकों पश्चिमी एशिया संकट दरमियान दरामद किए ईंधन से निर्भरता घटा के चुगिरदे पक्षों निरंतर रहनयोग विकल्प अपनाउंदे आर्थिक लचकीलेपण विच योगदान पाउण दीआं 7 अपीलां दे संबंध विच चुकिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटा के इसनों अद्धे तो भी घट कर दिता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों विधायकों और जनप्रतिनिधियों वालों सरकारी वाहनों की वरतों घटाने के उपावों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों और होर अधिकारियों के वाहनों के बेड़े में 50% कटौती करने के आदेश दिए ने और निर्देश भी दिए ने कि सरकारी काफिलों तो बेलोड़े वाहन हटाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 इसे दिन भारत वालों की गई परमाणु परखा याद किया है। सोशल मीडिया से संस्कृत सोलोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने परमाणु परखा ने देश के अटुट इरादे को दर्शाया। श्री मोदी ने कहा कि परखा तो बाद पूरी दुनिया ने भारत से दबाव पाया पर भारत ने साबित कर दिता कि कोई भी शक्ति इस काबू नहीं कर सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन विखे साबका राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद नूं उन्हां दे जन्मदिन ते फुल्लां नाल श्रद्धांजलि भेंट की। फखरुद्दीन अली अहमद ने देश के 5वें राष्ट्रपति वजों सेवा निभाई ते 24 अगस्त 1974 तो 11 फरवरी 1977 नूं अपने देहांत तक इस अहुदे ते रहे। अजिहे पहले राष्ट्रपति सन जिन्हां दा अहुदे ते रहिंदिआं देहांत होया सी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने लुड़िंदे भगौड़े प्रभदीप सिंह की अजरबाईजान तो सफलता नाल भारत हवालगी नूं यकीनी बनाया है। CBI ने यह कार्रवाई विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ते दिल्ली पुलिस नाल तालमेल करके की। CBI ने कहा कि प्रभदीप नवी दिल्ली के स्पैशल सैल पुलिस थाने विच नशीलियां दवाइयां ते मनोरोगी पदार्थ NDPS कानून दियां वख-वख धाराएं तहत दर्ज एक मामले विच लुड़िंदा सी। इस मामले विच वड्डी मात्रा विच नशीले पदार्थ बरामद किए गए सन ते कई सह दोषियों नूं गिरफ्तार किया गया सी। CBI ने कहा कि प्रभदीप इस ड्रग रैकेट का मुख्य प्रबंधक सी। पिछले कुछ सालों में 160 तो वध लुड़िंदे अपराधियों नूं सफलता नाल भारत हवालगी की गई है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों विच अपना कार्यकाल पूरा होने तो बाद सरकारी नौकरियों विच अग्निवीरां लई राखवाकरण नीति बनाउण दा फैसला कीता है। इस लई रूपरेखा ते ढांचे नूं समाबद्ध ढंग नाल अंतिम रूप देण लई सीनियर सिविल ते पुलिस अधिकारियों दी कुछ शक्तिशाली कमेटी दा गठन कीता गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राखवाकरण वधाउण नूं सिद्धांतक तौर ते प्रवानगी दे दित्ती है तां जो इह सिखलाई प्राप्त ते अनुशासित नौजवान पंजाब दे समाजिक ते आर्थिक विकास दा इक अनिखणवा अंग बन सकन। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਡ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ।

जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सवेरे चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना नाल मुलाकात की थी। श्री जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दसिया कि दोवां नेतावां ने बाजारां ते स्रोतियां विच भिन्नता लियाउण, तरजीही वस्तां की दरामद नूं वधाउण अते सेवावां की आर्थिकता नूं सुचारू बनाउण लई दुवल्ले सहयोग नूं मजबूत करन ते चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को कल तो शुरू होण वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो रोज़ा मीटिंग विच शामिल होण लई भारत आए ने। इंडोनेशियाई विदेश मंत्री सुगियोनो आज सवेरे नवी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। वह कल तो शुरू हो रही दो दिन ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने लई भारत का दौरा कर रहे हैं। इस मीटिंग की प्रधानगी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स के विदेश मंत्री ते मैंबर ते भाईवाल देशों के वफद के मुखी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल भी मुलाकात करेंगे। मीटिंग दौरान ब्रिक्स मैंबर देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के आलमी ते खेतरी मुद्दों से विचार वटांदरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करन दे इच्छुक लोगों को इस महीने की 19 तरीक तो पहला अर्जी देने की अपील की है। इस यात्रा लई रजिस्ट्रेशन छेती ही बंद हो रही है। इच्छुक बिनेकार अधिकारित वैबसाइट kmy.gov.in राही होर जानकारी प्राप्त कर सकते ने अते रजिस्टर भी कर सकते ने। मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र से समाजवादी पार्टी के मुखी अखिलेश यादव के मतरे भरा प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में देहांत हो गया है। उन्होंने लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया जिथे उन्होंने मृतक ऐलान दिता गया। उन्होंने पत्नी अपर्णा बिश यादव बीजेपी के मैंबर ने ते मौजूदा समय में राज महिला कमीशन के उप चेयरपर्सन ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के देहांत से डूंघा दुख प्रगट किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतीक यादव का अचानक देहांत बेहद दुखदाय। मुख्यमंत्री ने उन्होंने परिवार प्रति डूंगी संवेदना प्रकट की थी। नीट यूजी प्रीख्या के प्रश्न पत्र के कथित तौर पर लीक होने के मामले की जांच लई केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की एक टीम जयपुर पहुंच गई है। टीम ने राजस्थान पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप SOG वालों हिरासत में लए गए कई लोगों तो पूछगिछ की है। जांच के हिस्से वजो SOG ने सीकर और आले दुआले के इलाकों में भी लोगों तो पूछगिछ की है। IPL क्रिकेट में अज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होएगा। यह मैच शामी 7:30 बजे शुरू होएगा। बीती रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम च गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद नू 82 दौड़ों नाल हरा के अंक सूची में सिखरला स्थान हासिल कर लिया है। आखिर विच इस बुलेटिन दियां खास खास खबरां एक बार फिर। तमिलनाडु विच सी जोसेफ विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु वेतरी कड़गम सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा विच भरोसे का वोट हासिल कर लिया है। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी ने अज रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। सरकार ने सोने ते होर कीमती धातां ते दरामदी महसूल वधा दिता है। पंजाब सरकार वालों रक्षा बलों विच कार्यकाल पूरा होने तो बाद सरकारी नौकरियों विच अग्निवीरां लई राखवांकरण नीति बनाई जाएगी। ते विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करन दे इच्छुक लोगों नूं इस महीने की 19 तरीक तो पहला अर्जियां देण लई कहा है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की कयादत वाली टीवीके हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। भारतीय महकमे

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से।

0: अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर

0: आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। CBI ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ NDPS अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने

0: चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनते हैं लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी अमरजीत सिंह रिखिया दे गाए लोक गीतां दा आनंद मानोगे।

प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती, ते इस विच तुसी अमरजीत सिंह रिखिया दे गाए लोक गीत सुन रहे हो। सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला लोक गीत।

प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर करांगे अमरजीत सिंह रिखिया दी आवाज़ विच। आओ फिर आनंद मानदे हां अगले गीत दा।

ऐगी सी फिल्म वो कौन थी दा। अगला गीत हाजिर है फिल्म आराधना दा। इस गीत नो आवाज़ दिती है किशोर कुमार ने।

तुर्की बाणी इलाही इल्हाम है, शब्द है, सद है, ब्रह्म है। सदनू आवाजा भी क्या जानदा है, आवाज भी क्या जानदा है। अकाल पुरख नाल स्नेह रखण वाले प्राणी, सच्चे गुरु नाल स्नेह रखण वाले प्राणी, सच्चे गुरु दा बचन सद दे रूप विच सरवण करना लोचदे ने। उते ऐसे गुरु तो कुर्बान जांदे ने जिदा सोना शब्द सरवण करके, जिसकी महिमा सरवण करके मन मौलिया जांदा है। ऐसे गुरु नू ओ अपना मन अर्पण करदे ने ते वारने जांदे ने। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सरवण करदे आ भाई रविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए

कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। आप जी सरवण कर रहे सो पाई रविंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द। अकाल पुरख दे सोने बचना नाल प्रीत रखन वाले प्राणी तिना दी ए अभिलाषा हुंदी है, यही तांग हुंदी है कि कोई उस प्रभु दे सोने गीत अलाए, प्रभु दी सदनू अलाए, उसदा सदड़ा अलाए ते असी बैठ के सरवण करिए।

तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बहे अलाए। सरवण करदे आ डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: सदड़ा सुनी जय पाई, जी को बह अलाए। आप जी सरवण कर रहे सो डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलविंदर सिंह।
1: सोही महला पहलम, जोगी होवे जोगवे, भोगी होवे खाए, तपिया होवे तप करे, तीर्थ मल मल नाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को बहे अलाई, रहाओ जैसा बीजे सो लूने, जो खट्टे सो खाई, अग्गे पुछ न होवई जे सण निशाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए, जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए, ए तन वेची बै करी जे को ले बकाए, नानक कम न आवई जित तन नाही सच्चा नाओ। ए शब्द पहले पातशाह जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का उच्चारण किया होया सोही राग अंदर सुशोभित है। इस शब्द विच श्री गुरु नानक देव जी ने एक अकाल पुरख की सिफत सलाह ते नाम बाणी नाल जोड़िया है। सतगुरु शब्द दे रहाओ वाली पंक्ति विच प्रमाण करते हैं, तेरा सदड़ा सुनीजै भाई, जे को बहे अलाए रहाओ। हे मेरे प्यारे प्रभु, हर को मनुख तेरी खुशी लैण वास्ते, मुक्ति की प्राप्ति वास्ते वखरे वखरे कर्म करता है, कोई जप कोई तप कोई योग कमाउंदा है, पर मैं मूर्ख तेरी सिफत सलाह रूपी बाणी संदेशा ही सुनदा हाँ, मैं तेरी नाम बाणी नाल ही जुड़िया हाँ, जे को मैंने तेरी सिफत सलाह सुनावे। श्री गुरु रामदास जी बाणी विच प्रमाण करते हैं, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर भज मन मेरे तर भवजल तू तारी रहाओ। अगे सतगुरु शब्द विच प्रमाण करते हैं, जोगी होवै जोगवै, भोगी होवे खाए, तपिया होवे तप करे, तीर्थ मल मल नाए। जेड़ा मनुख जोगी बनता है वह मनुख जोगी नूं ही जोग नूं ही जीवन का सही रस्ता समझ के जोग कमाउंदा है। जो मनुख गृहस्थी बनता है वह मनुख भोगां विच ही मस्त रहिंदा है। जेड़ा मनुख तपिया बनता है वह मनुख सदा तप ही करता है ते तीर्थां उत्ते श्रद्धा भावना नाल इशनान करता है, ये कर्म करके ही मुक्ति की प्राप्ति चाहता है। श्री गुरु नानक देव जी ने जो कर्मां का खंडन करते हैं तो योगी नूं परमात्मा दे मिलाप का सही मार्ग दसते हैं। सोही राग विच सतगुरु प्रमाण करते हैं, योग न खिंथा योग न डंडा, योग न पसम चढ़ाइए, योग न मुंदी मूंड मंडाया, योग न सिंगी वाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, योग जुगत इव पाइए, गल्ली योग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई रहाओ। योग न बाढ़ मड़ी मसाणी, योग न ताड़ी लाइए, योग न देश दसंतर भवें, योग न तीर्थ नाइए,

कहा लो भाई है आन कौ, ईत ऊत प्रभ सदा सहाई, जी संग तेरे काम कौ। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम

0: पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 हुए ने हुण पेशे प्रोग्राम दा वेरवा।

हुण तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम पेश करांगे। अज इस विच काम दियां गल्लां, अज दे भा, कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल कृषि विज्ञान केंद्र फाजिलका किसानां दी सेवा च दे डायरैक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार अहलावत नाल होई गल्लबात सुणोगे। इस तों बाद सौणी च नदीना दी रोकथाम बारे डॉक्टर मनप्रीत नाल होई गल्लबात सुणवाई जावेगी। ₹7:40 समाचार समीक्षा प्रोग्राम पेश करांगे। ₹7:45 हिंदी वार्ता प्रोग्राम च सीमा पाटिया की कहानी सुनोगे लम्हे। रात 8 बजे पेश करांगे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 चर्चा का विषय है, तुसे सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तों।

रात 10 बजे समा रहेगा मुख्य खबरों का। दस बज के 2 मिनट थोड़ी फरमाइश प्रोग्राम च व्हाट्सएप ते फोन इन राही अपनी पसंद दे तुसी गीत सुन सकोगे। रात 11:10 सौगात प्रोग्राम पेश करांगे डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र तो। सो एसी जी हुन प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा फेरवा।

0: मूरख, नवी कार जीतने का मौका।
1: वाह, मैं पापा नो सरप्राइज देंगी। बस थोड़ी जी डिटेल पढ़नी है।
2: रुक जा मूरख।
3: कि अजय पॉपअप्स तो सावधान रहो। स्कैमर्स निजी वेरवियां दी दुर्वर्तों कर सकते हैं।
2: ओ, तू समझ गई ना? ठंड रख।
0: कर कार जीत जान देता। पापा होमवर्क नहीं करांदे।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो।
0: कूल रहो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण सुनते हैं देश गान।

0: से कस्टम हायरिंग सेंटर भी बहुत खुले हुए हैं हमारे। किसान हर इम्प्लीमेंट असन जो लेता है वो खरीद नहीं चाहिए
1: सकते
0: उसको,
1: बिल्कुल।
0: जो आपका एक साल में एक दिन चला वो आप के जो कस्टम हायरिंग सेंटर से ले सकते हो। और कुछ नए इम्प्लीमेंट्स किसानों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए केवीके में होते हैं कि इस तो इम्प्लीमेंट से फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे मैं केवीके फाजिल्का में हूँ, हमने रीपर कंबाइंडर खरीदा, उससे किसान जो बाग वाले थे उनका खर्चा 5,000 लगभग आता है, 5 से 5,500 अगर वो लेबर से कराते हैं। पर अगर वो रीपर कंबाइंडर से कराते हैं तो उनका 1,500 रुपये में 1 एकड़ हो जाता है, तो उनका बचत हुआ, टाइम की बचत हुआ। तो ये चीज़ें अगर कृषि विज्ञान के साथ मिलते हैं तो हम किसानों को ये फ़ायदा देते हैं और हमको ट्रेनिंग भी देते हैं कि भाई आप ऐसे करके बचत कर, नई टेक्नोलॉजी जल्द ज़्यादा सीखनी है तो आप करते हैं। दूसरा, हम OFT, FLD और जो नई तकनीक है, जैसे वातावरण बदल रहा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नए बीज कौन से आए हैं, नए बीज हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं किसान को, वो सब नई टेक्नोलॉजी। अगर एक टेक्नोलॉजी लैब से लेके लैंड तक, लैब में जो बनी हुई टेक्नोलॉजी को लैंड में लाना जरूरी है, लैंड में अगर वो काम नहीं कर रही तो लैब वाली का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमें केवीके इस रूप में भी काम करता है, टेक्नोलॉजी फार्मर के यहाँ काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही।
1: बिल्कुल सही गल है कि तीन चार ढंग है, तरीके है जिन्हां दे नाल तुहाडी जानकारी किसान तक पहुँचती है। हुण अरविंद जी गल है कि किसानी जिहड़ी है ना वो बहुपक्खी, जिहनूं आपां कह सकदे आ बहुमुखी किसानी होगी। किसानी पहलां फसलां दी खेती सी, हुण साडे फसलां दे नाल नाल किते धंदे, और जोर भी इस गल ते दित्ता जा रिहा माहरां वल्लों सरकारां वल्लों, ते होणा भी चाहीदा है कि सानू खेती ते जिहड़ी निर्भरता है वो घटा के स्वै निर्भर अपने आप नू बनाउणा है, वो किते धंदियां दे जरिए ही आपां बना सकदे हां। कि खेतीबाड़ी दी जानकारी दे नाल नाल किहड़े किहड़े खास किते धंदे है, जिहदा तुसीं केवीके फाजिलका दे विच कम कर रहे हो, जिहड़े साडे नौजवान बच्चे है जां नौजवान साडीआं कुड़ियां है बीबियां है, तां कि उहनां नू इत्थे ही सिखियत बनाया जा सके, इत्थे ही वो अपनी स्वै निर्भर हो सकन बाहरले देशां दे जाण दी बजाए।
0: रुली राम जी, हमने कोशिश करी है अपने केवीके के बीच कि हम अपने जो जो अपनी लड़की बेटियां हैं बेटे हैं जो गांव के अंदर हैं और वो 10,000 20,000 की नौकरियां देखने के लिए बाहर जाते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं वो खुद रोजगार दे, खुद रोजगार लेने के बजाय खुद रोजगार गांव में दे।
1: बिल्कुल
0: तो हमने क्या करा है, अपने वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम कोशिश कर रहे हैं लेबलिंग पैकिंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माल जो है उसकी पैकिंग कैसी है, उसको कितने दिन तक चलता है, उसको अवेयरनेस करना। हमारे यहाँ पे जो केवीके है एक इंस्टीट्यूट भी है, पोस्ट हार्वेस्ट इंस्टीट्यूट, तो इसलिए हमने उसके अंदर हमने जो मशीनें हैं वो रखी हुई है और किसानों को हम प्रेरित करते हैं, बहनों भाइयों सबको, कि आके ट्रेनिंग लें और उसके बाद में उस ट्रेनिंग से आप प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट में हम उनकी सहायता कर रहे हैं कि उनका प्रोसेसिंग कैसे हो वो हमारे यहाँ कर सकते हैं, पहले खरीदने ना इम्प्लीमेंट खरीदे ना जो भी चीज़ खरीदने की बजाय पहले यहाँ के बनाएं, बनाने के बाद सबसे इस ज़मीन पे सबसे मुश्किल काम है उसको बेचना। बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। बेचने के लिए मार्केटिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, उसको कैसे करके आपको बेचना है, उसकी गुणवत्ता कैसे मेंटेन करनी है, वो सब सिखाना जरूरी है। वो हम अपने केवीके पे सब किसान भाई बहनों को सिखाई जाती है, कोई 3 दिन की ट्रेनिंग है, कोई 5 दिन की ट्रेनिंग है, कोई 7 दिन की ट्रेनिंग है, और उसके बाद में भी हम उनको लगातार उनके साथ लगे रहते हैं। हमने लगभग सरकार का भी जोर है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाए, हमने लगभग 15 से 20 अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया, उनके साथ लगे हुए हैं कि वो आगे जाएं, कुछ मसाला बनाते हैं, कुछ अचार मुरब्बा बनाते हैं, कुछ घी का कर करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन बहुत सारा करते हैं। और हमने खास करके अपने किसान भाइयों को ये कहते हैं, प्रेरित करते हैं कि जो अपने एरिया में चीज़ें हो उसका ही प्रोसेसिंग करें, आप वैल्यू एडिशन करें।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप एक दूसरे एरिया से लाओगे तो आपके रेट बढ़ जाएंगे और आपका वैल्यू जो सामान बना रहे हो उसका रेट हाई रहेगा दूसरों से। तो इसलिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप सब अपने एरिया की चीज़ों को ही वैल्यू एडिशन करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मैं केवीके फाजिलका में हूँ, तो फाजिलका में आपको

0: का खेती होती है,
1: हाँ पे बहुत ज्यादा।
0: अमरूद की खेती होती है, तो इन चीजों के प्रोडक्ट बने तो किसानों को फायदा हो। अगर हम कहने उधर से हल्दी बहुत सारी किसान कर रहे हैं, तो हम दो तरह से कांटेक्ट कर रहे हैं, किसान को भी हम लेते हैं, जो किसान कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और जो प्रोसेसिंग कर रहा है, उन दोनों को मिलाने का कार्य भी केवीके कर रहा है, जिससे दोनों की आमदनी बढ़ सके, डायरेक्ट वो बिचौलिया में ना जाए किसान जाए,
1: ताकि
0: तो
1: ओहदा
0: इसमें
1: मुनाफा ओहदी जेबे
0: उसकी
1: आवे।
0: जेब में आए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक गल, हुण अज जिहड़ा समां है, क्योंकि एक बड़ा साढ़े सामने समस्या है कि जिहड़ी रसायण की खेती है, ये कितें ना कितें साढ़े मनुखी जीवन लिए बहुत सारियां मुश्किलां पैदा कर रही है। आपां सारे जाणदे आ बीमारियां जिहड़ियां बच्चों तो लै के मतलब प्रौढ़वस्था तक उन्हां दी आमद बहुत ज़्यादा हो गई है, साढ़े जीण दी मतलब जीवन शैली च बहुत माड़े प्रभाव पै रहे हैं। ये कितें ना कितें जिदा कहते जिदा का अन्न उदा का मन है ना, जो असी खाने वह प्रभाव सानू देखने मिलता है। सो रसायणा तो मुक्त खेती जी आप कुदरती ऑरगेनिक खेती की जो गल करते हैं, कोई इनू भी इजाफा ये बढ़ावा देने लिए भी काम किया जा रहा है केवीके च?
0: हाँ रुली राम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सरकार भी इसके ऊपर जोर दे रही है और केवीके भी इसके ऊपर जोर दे रहा है। हम लगातार अभी ये पूरा महीना 2 महीने से हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र एक प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसमें सब केवीके सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगे हुए हैं कि हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र ओवर यूज़ ना करें। दूसरा जो आपने पूछा, नेचुरल फार्मिंग एक है, एक आपको नेचुरल फार्मिंग कैसे करते हैं उसके लिए हमने ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा किस केवीके के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, और उनको बता भी जाता है कि आप कम से कम इस्तेमाल सोयल टेस्ट कराएं पहले, जितनी ज़रूरत जिस चीज़ को है उतनी ज़रूरत आप सामान को दें, उससे दो चीज़ का फायदा होगा, आपका जीवन सुधरेगा, आपका प्रोडक्ट के अंदर अवशेष नहीं आएंगे, दवाइयों के अवशेष नहीं आएंगे जो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हम दिन पे दिन क्या कहते हैं हम जाते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन के साथ साथ हमें ये देखना है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, हमने अपनी मिट्टी की हालत क्या कर दी है। जब मिट्टी हमारी एक वेंटिलेटर पे चली जाएगी और वो मरने की अवस्था में पहुंच जाएगी, तो हम उसके बाद जब अगर वो बिल्कुल ख़त्म होगी तो हम नहीं कर सकते।
1: नहीं कर बिल्कुल।
0: तो इसके दिक्कत क्या है कि हमने लगातार लगे हुए हैं फार्मर को अवेयरनेस करने के लिए कि हम सूक्ष्म जीव जो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, आपको रूढ़ी की खाद वो डालनी है, आपको फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर डालना है, रूढ़ी की खाद भी कैसे बनानी है आपको, उसका भी जैसे हम जाते हैं गांव में लगातार हम जा रहे हैं, तो रूढ़ी लोग बागों के गांव घरों गांव के शुरू में सब बाहर पड़ी रहती है, वो तरीके सही नहीं है, वो तरीके भी बताने जरूरी हैं
1: बिल्कुल।
0: किसानों को, तो हम उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई ये रूढ़ी की खाद है, इसको आप ऐसे मेंटेन करोगे तो ही इसके तत्व जमीन में जाएंगे और आपकी फसल को मिलेंगे, तो ये सब कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है।
1: अच्छा डॉक्टर अरविंद कुमार अलावा जी, एक जिहड़ा अज समय की लोड़ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पुरातनता जिहड़ी है वह दोहरा कर दी है। अपना पहला आप समूहों च रहिंदे सी, समूहों के विच ही साडा विकास होया है। अज किते ना किते जिहड़ा आप कह रहे कि कल्लापण आ रहा, साडी कहरी परिवार प्रणाली ने बड़ा कुछ सातों जिहड़ा है वह खिंच लिया है, जिहदे करके अज दिक्कतां मुश्किलां साडे सामने। हुण खर्चे देख लो घरां दे किन्ने ज़्यादा हो गए है, और मानसिक रोग शरीरक रोग भी वो जे पैदा होने लगे। कित ना कि जी कहरी परिवार प्रणाली है असुरक्षता की भावना पैदा करती है। हूँ संयुक्त जिदा आप कहने कि संयुक्त परिवार प्रणाली से, तो संयुक्त खेती भी सी साड़ी, उदो तो सी कि समूह की खेती सी कि सारे असी कट्ठे होकर करते, पर अज जी समय की लड़ है कि साड़ी पैली भी एक तरह न कहरी परिवार प्रणाली हो गई, वह टुकड़ा छोटा जहा 5-7 एकड़ का है। हूँ जे तुम उत्थे 2 फसलों का काम करोगे ते तुहाडे पल्ले की पऊगा, कि उत्थे भी सानू इंटीग्रेटेड जिहनूं आपां कह सकदे आ मैनेजमेंट करना फसलां दा या संयुक्त खेती प्रणाली नूं अपनाउणा, उह नहीं समें दी लोड़?
0: ये बिल आपने सवाल जो किया बहुत अच्छा है, इसके अंदर समय की लोड यही है कि हमें ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करना चाहिए, और हमें समय समय और फार्मर जिसकी रकबा छोटा है, जो थोड़ी जमीन है जिसके पास 4 एकड़ 5 एकड़, वो अगर एक ही क्रॉप 2 क्रॉप के ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, वो लाभ होगा नहीं, उसको हानि हानि होगी। तो हम ऐसी ये सजेस्ट करते हैं कि आप ना फिशरीज पोल्ट्री और मशरूम फार्मिंग एक दूसरे के सहायक धंधे हैं और एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाते हैं, जैसे आप मुर्गी पालन

0: करोगे, पशुपालन को होगा, तो दोनों का क्या कहते हैं उसके अंदर बीमारियां बहुत सारी हैं, एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है, और उससे क्या होता है कि आपका फायदा होता है ज्यादा। अगर आप एक ही चीज के ऊपर लगे रहोगे तो फायदा नहीं। और इंटीग्रेटिंग फार्मिंग सिस्टम कैसे बनाया गया कि एक चीज की चीज दूसरे के काम आ सके,
1: बेटा
0: जैसे
1: परमात्मा ने भी तो
0: हाँ
1: इंटीग्रेटेड दुनिया नु की
0: यस
1: बनाया है,
0: यस
1: एक दूजा दूजे की खुराक
0: बिल्कुल
1: है, एक
0: बिल्कुल
1: दूजा दूजे की निर्भरता
0: हाँ जी,
1: है ना।
0: ऐसे ही हमारे को इंटीग्रेटेड में जाना चाहिए। और किसानों को हम लगातार समझा रहे हैं कि देखो सरकार इंटीग्रेटेड, एक तो ये हो गया कि आपको अलग अलग क्रॉप लगानी है, और सरकार ने आपको आगे आगे जो लोन भी मिल रहे हैं ना आपको, वो भी इंटीग्रेटेड के टाइप से ही मिल रहे हैं आपको। अगर आप संयुक्त रूप से नहीं लोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा।
1: नहीं मिल रहा
0: आपको अकेले को अगर 50% मिल रहा है तो संयुक्त रूप से आपको 80% मिलेगा,
1: सही।
0: तो आपको संयुक्त तो होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: और आपको अगर हम लगातार ऐसे अलग अलग होंगे तो आपके जैसे इम्प्लीमेंट खरीदना है, मैं गांव में लगातार जाते हैं, हम इम्प्लीमेंट खरीद रहे हैं, किसान अगर आपको एक इम्प्लीमेंट का 2 दिन जरूरत पड़ती है तो आप संयुक्त रूप से चलाओगे तो उसको आप ज्यादा यूज कर पाओगे,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: नई टेक्नोलॉजी हर तीसरे साल नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो इसलिए सबसे यही प्रार्थना है कि वो आप अपना संयुक्त रूप से काम करने की कोशिश करें, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जैसे फिशरीज है, क्रॉप्स, ये कुक्कुट पालन है, और ये मशरूम है, हनी हनी बी वाला है, मधुमक्खी पालन है, ये सबको आप करें। और अधिकतर जो आपका KVK है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके साथ सहयोग करके चले और अपनी आमदनी को बढ़ाएं।
1: सो डॉक्टर अरविंद कुमार अलावत जी, तुसी KVK फाजिलका तो साढ़े कोले आए, और KVK फाजिलका या बाकी दे भी KVK किहड़े किहड़े पक्खां ते किहड़े किहड़े खेतरां दे विच अपनी सेवा निभा रहे हैं, और किसानां नूं किद्दां सिखियत कर रहे हैं हर पक्ष दे उत्ते, तां कि किसान दी जिहड़ी बुनियादी जिद्दां आपां कहिंदे कि धरातल तों उहनूं उपरले पद्धर तक उहदी आमदन नूं वधा के उहनूं खेती दे विच ही स्वयं निर्भर बनाया जा सके, ये सारी जानकारी लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: सुनी जी गलबात,
3: बहुत वधिया, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जिहड़ी सानू उन्होंने दित्ती। मैनू
2: हाँ
3: पता नहीं सी इंडिया च इन्नी डिवेलपमेंट हो चुकी है।
2: बिल्कुल जी, देखो जिहड़े कृषि विज्ञान केंद्र ने एक किसान वीरां दी सेवा विच ने
3: जी,
2: ते साडा जिदा कहने भी फर्ज बनता आपां चल के जाइए, किसान वीर जिथे देखो माहर बैठे है ते वो अपनी हर तरीके नाल सहायता करन नूं तैयार हुंदे है।
3: तुसीं सेवा दी गल कीती, मैनू तो याद आंदा कि पंजाब पुलिस तुहाडी सेवा च, ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਵੇ।
2: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,
3: ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੇਵਾ।
4: ਨਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮੇਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਹ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾ।
2: ਹਾਂ
4: ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੈਰੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ
3: ਜੀ,
2: ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ,
3: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ,
3: ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਖਾਦ ਦੀ ਉਨੀ ਵਰਤੀਏ, ਸੰਜਮ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ,
3: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ,
2: ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ,
3: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
2: ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3: ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ।
2: ਫਿਰ ਗੀਤ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
3: ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ।

0: हुण तुसी सुन रहे सी देहाती प्रोग्राम असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
1: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: सारे लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: हुण तक 8,85,00,000 तो वध लाभपात्री इस योजना नाल जुड़ चुके हैं। जेकर तुहाडी उम्र भी 18 to 40 साल दे विचकार है तां महीनावार अटल पेंशन समेत योजना दे 3 गारंटी शुदा लाभां बारे जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: असीं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले 7:30 वज रहे ने, हुण तुसीं सुणोगे पंजाबी च खबरां।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला खास खबर, आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने 2026-27 की मंडीकरण रुत लई 1400 फसलों लिए घट्टो घट समर्थन मुल में वाधे को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत नाल कोला ते लिगनाइट गैसीकरण प्रोजैक्टों उत्साहित करने संबंधी एक योजना भी प्रवानगी दी। एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की गिनती घटाने का फैसला किया है। CBSE ते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 12वीं जमात की बोर्ड प्रीख्या के नतीजे ऐलान दिए ने ते सरकार वालों सोने ते होर कीमती तत्तां ते दरामदी महसूल वधाउण तों बाद सोने ते चांदी दीआं कीमतां च भारी उछाल आया है। हुण खबरां विस्थार नाल। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने 2026-27 की मंडीकरण रुत लई 1400 फसलों लिए घट्टो घट समर्थन मुल में वाधे को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदिआं सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने किसानों लिए लाहेवंद कीमतों को यकीनी बनाने लिए सोनी दीआं फसलों लिए MSP में वाधा किया है। उन्होंने कहा कि सोनी रुत लई किसानों को अंदाजन 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने अगे कहा कि इस सीजन दौरान 824 लाख मीट्रिक टन तो वध फसलों की खरीद की जाएगी।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मीट्रिक टन LMT।
3: श्री वैष्णव ने दस्या कि सूरजमुखी लिए MSP में 622 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा किया गया है। इस तो बाद कपाह लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल है ते तिलां लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा किया गया है। ग्रेड ए झोने का घट्टो घट समर्थन मुल 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाईब्रिड जवार लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत नाल कोला ते लिगनाइट गैसीकरण प्रोजैक्टों उत्साहित करने की भी एक योजना नूं मंजूरी दे दित्ती है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया नूं दस्या कि योजना भारत के कोला ते लिगनाइट गैसीकरण प्रोग्राम नूं तेज़ करन वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
3: यह फैसला मौजूदा भू राजनीतिक हालत में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलकदमियों भी मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनतक निजी भाईवाली PP मॉडल तहत नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अपग्रेडेशन ते आधुनिकीकरण भी मंजूरी दी है। कैबिनेट मीटिंग तो बाद पत्रकारों संबोधन करद श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह नागपुर हवाई अड्डे एक खेतरी हवाबाजी हब बनाने वाले एक महत्वपूर्ण फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल वालों 2026-27 के मंडीकरण सीजन लिए सोनी दीआं फसलों लिए घट्टो घट समर्थन मुल में वाधे को मंजूरी देने का फैसला यह यकीनी बनाएगा कि देश के करोड़ों अन्नदाताओं को उनकी उपज लिए उचित और लाहेवंद कीमतें मिलन। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि फैसला देश के किसानों के जीवन में वधेरे खुशहाली लाएगा। श्री मोदी ने कहा कि कैबिनेट वालों मंजूर किए गए कोला लिगनाइट गैसीफिकेशन प्रोजैक्टों को उत्साहित करने की योजना ऊर्जा सुरक्षा ते निवेश को बढ़ाएगी ते नौजवानों लिए रोजगार के मौके पैदा करेगी। एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय उड़ाना

0: ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ।
1: नमस्कार, पेशे हफ्तावारी समाचार समीक्षा। लेखक ने सीनियर पत्रकार जितेंद्र पम्मी, वाचिका अमनप्रीत कौर। विषय यूएन ग्लोबल सड़क सुरक्षा हफ्ता। विश्व भर सड़की हादसों दौरान जान वालियां कीमती जाना बचाने दे मकसद नाल विश्व सेहत संगठन वालों हर साल 8 to 14 May तक यूएन ग्लोबल सड़क सुरक्षा हफ्ता मनाया जाता है। यह हफ्ता 2007 तो मनाना शुरू किया गया है। इस बार का टीचा लोगों को सड़क सुरक्षा बारे जानकारी देना है ते हादसों को रोकना है। जेकर विश्व पद्धर ते सड़की हादसों की गल की जाए तो हरेक साल 1.3 million लोगों की जान चली जाती है ते 20 to 50 million लोग जख्मी हो जाते हैं। जेकर भारत च हर साल होने वाले सड़क हादसों की गल की जाए तो 2025 राज्यसभा च सड़की हादसों बारे पूछे गए एक सवाल के जवाब च भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय वालों पिछले 4 साल के जारी किए गए अंकड़ों मुताबिक 2021 वापरे 412,432 हादसों चो 153,972 लोगों की मौत हुई, जदों के साल 2022 461,312 हादसों विचों 168,491 लोगों की मौत हुई। 2023 480,583 हादसों विचों 172,890 अते 2024 487,705 हादसों विचों 170,177 लोगों की जान चली गई। हादसों च लोगों की गिनती का अंकड़ा साल दर साल वधदा जा रहा है। इसी तरह जेकर पंजाब च होने वाले सड़क हादसों की गल करिए तां सूबे च 2021 दौरान 5,871 हादसे वापरे, जिन्हां चों 4,598 मौतां होईयां। इसी तरह 2022 दौरान 6,138 चों 4,756 अते 2023 दौरान 6,269 विचों 4,829 अते 2024 दौरान वापरे 6,063 सड़की हादसों चों 4,759 लोगों नूं अपनी जान तों हाथ धोने पए। इन्हां हादसों दा मुख कारण तेज रफ्तार, लापरवाही नाल ड्राइविंग, आवाजाई नियमां दी जानकारी ना होना अते एक दूजे नालों अगे लंघन दी होड़ मन्निया जांदा है। इस तों इलावा बिना सिखलाई हासिल कीते वाहनां नूं चलाउणा अते छोटे बच्चां नूं वाहन चलाउण लई देणा वी हादसों दा वड्डा कारण बनदा है। अक्सर देखिया जांदा है कि कुछ मापे अपने नाबालिग बच्चां नूं 2-पहिया जां 4-पहिया वाहन चलाउण लई दे दिंदे हन, जो कि हादसे दा शिकार हो जांदे ने। देश अंदर सड़की हादसों तों बचा, सुरक्षित अते आसान यात्रा लई भारत सरकार ने 2014 च रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल लियांदा। सड़की हादसों च वधेरे मौतां हादसे दा शिकार होण वाले लोकां नूं समय सिर इलाज मुहैया ना होने करके हो जांदियां ने। इस मकसद नाल पंजाब अंदर भी सड़क हादसों च होने वाली मौतों की गिनती रोकने लई सूबा सरकार ने फरवरी 2024 च सड़क सुरक्षा फोर्स की स्थापना की है। ये फोर्स कौमी अते राज मार्ग ते तैनात की गई है, जिस दे मुलाजम हादसा होने की सूरत च घटना स्थान ते कुछ समय अंदर ही पुज जाते हैं, जिस नाल कीमती जाना बचाईया जा सकदियां ने। इस तों इलावा हादसे के जख्मियों नूं हस्पताल पहुंचाने वाले लोगों नूं कानूनी कार्रवाई तहत होने वाली खज्जल खुआरी तो छोट देने दे नाल ही मददगार नूं पंजाब सरकार वल्लों सन्मान वजो राशि भी दित्ती जांदी है, तां जो लोग हादसे दे पीड़तां दी बिना किसे डर दे मदद कर सकन। ट्रैफिक नियमां प्रति जागरूकता पैदा करन लई ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक सिक्ख्या सैल वल्लों सिक्ख्या संस्थावां च जा के बच्चां नूं जागरूक कीता जांदा है अते उन्हां नूं मुढली सहायता देण लई सिखलाई भी दित्ती जांदी है। इस तों इलावा टैक्सी स्टैंडां, बस अड्डियां ते जा के ड्राइवरां नूं आवाजाई नियमां बारे जागरूक कीता जांदा है। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਗਲੋਬਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਨਮਸਕਾਰ।
0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7:45 ਤੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ।

0: तारारारा गाने लगे थे। मैंने भी एक तस्वीर उठाकर पासा पलट दिया। इसी तरह बहुत देर तक उन तस्वीरों में छिपे अपने अलहड़पन को याद करते हुए हम खुश होते रहे। तभी अचानक एक ग्रुप फोटो हाथ में लगा। अरे ये तो रंजन ही है ना, एक जगह पर इशारा करते हुए अपनी स्मृति पर जोर देते हुए अंजलि ने कहा तो हम तीनों के चेहरे की रंगत ही बदल गई। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का रंजन हमसे एक साल सीनियर था। 5 फीट 10 इंच लंबे रंजन का डील डोल बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा लगता था। हालांकि उन दिनों जिम वगैरह जाने का ज़्यादा रिवाज नहीं था, पर रंजन अपनी तंदुरुस्ती को लेकर बहुत सजग था। खाने पीने का बहुत शौकीन। अमृतसर के एक एक ढाबे और होटल के स्वाद की चर्चा वह अक्सर अपने दोस्तों से किया करता था। अंजलि के घर के पास रहने के कारण दोनों एक साथ कॉलेज आते जाते थे, जिन्हें देख सब खूब चूहलबाजी करते थे कि दोनों की जोड़ी वाकई बहुत जचेगी। पर अंजलि के मन में उसके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं था। एक बात तो हमें बहुत बाद में पता चली, जब रंजन BSc फाइनल में था तब एक सड़क दुर्घटना ने भरी जवानी में ही उसे हमसे छीन लिया। कॉलेज में हर तरफ उदासी छा गई। एक दिन मुझे आभा से कुछ नोट्स चाहिए थे, पर उस दिन आभा को घर जल्दी जाना था, तो उसने मुझे ये कहते हुए अपनी कॉपी पकड़ा दी कि मैं कॉलेज आकर उसे वापस कर दूँ। घर आकर शाम को मैंने नोट्स उतारने के लिए जैसे ही कॉपी खोली तो उसमें एक तह लगा कर रखा हुआ कागज़ गिर पड़ा। आभा जी, बहुत हिम्मत करके आपके किए सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ। ये सच है कि इस समय मेरी ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं है, पर यह भी उतना ही कटु सत्य है कि फ़िलहाल मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे पारिवारिक हालात अभी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देते। अभी तो मुझे आगे पढ़ाई जारी करनी है और अपने पैरों पर खड़े होना है। अपने से बड़ी 2 बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी निभानी है, इसलिए मैं आपको किसी भी तरह का झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। आप भी फिलहाल अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और माता पिता के कहे अनुसार ही शादी ब्याह का फैसला लें। आपका शुभचिंतक रंजन। ऊपर लिखी तारीख देखी तो मैं एकदम स्तब्ध रह गई। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले ही रंजन ने यह पत्र आभा को लिखा था। अब मुझे रंजन की मृत्यु के बाद कई दिनों तक आभा की सूजी हुई आंखों का रहस्य समझ आ रहा था। वह समय ही ऐसा था जब प्रेम प्यार की बातें सार्वजनिक नहीं की जाती थी। कई बार ऐसे खूबसूरत एहसास को मन के किसी कोने में समेट कर ही जिंदगी बितानी पड़ती थी। अंजलि को भी मैंने किसी से भी जिक्र ना करने की कसम देकर सारी बात बता दी थी। उसके अगले दिन मैंने खामोशी से पत्र का जिक्र किए बिना ही कॉपी आभा को वापस कर दी, यह कहकर कि कल नोट्स बनाने का समय ही नहीं मिला, फिर कभी ले लूँगी। आज रंजन की तस्वीर को दोबारा देखते हुए आभा की आंखें छलक पड़ी और मैं और अंजलि भी उससे नजरें चुराने की असफल कोशिश करते हुए एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। धन्यवाद।
1: हिंदी वार्ता प्रोग्राम च हुण तुसी सुन रहे सी सीमा पाटिया की कहानी लम्हे। अस आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण तुसी समात फरमाओगे गजल मकबूल बाली की आवाज़ च।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गलता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनन वालों का स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से, जिथे तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 8:45 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਵਜੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਅਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी

0: व्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतरराज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह

0: मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। US एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और

0: विभिन्न संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापे मारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy.

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मूज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है।

0: आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: सो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी,

0: वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रति वर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी बहुत भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पर पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है,
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है, तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि

ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी

0: है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में जबकि हम
1: प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला। कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में अभी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है। लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है, उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको

0: ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही है रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा।

0: तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफकोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति, वर्ल्ड सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है। लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो मुझे लगता है

0: युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है। और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
1: जी
0: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट हैं तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2026-27 ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰੁੱਤ ਲਈ 14 ਸੌਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। AER ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CBSE ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾਰਕੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੋਮਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਟਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NRI ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 10:02 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼।

0: स्वागत करते हैं। हेलो,
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों को और आपको भी मेरा प्यार भरा आदाब।
0: आदाब हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी आपको।
1: कस्बा चिलकाना, जिला सहारनपुर से नदीम अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जी नदीम अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। ये बताइए कि कौन सी फरमाइश है आज के लिए।
1: फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के, आवाज मुकेश की, गीत के बोल हैं खुशी की वो रात आ गई।
0: जी लीजिए, आपका फ़ोन लग गया। इस प्रोग्राम में खुशी की बात तो है ही, और आपकी फरमाइश भी पूरी करने जा रहे हैं। इस गाने को एंजॉय कीजिए और ऐसे ही आपका साथ हमारे साथ बना रहे,
1: और
0: इसी दुआ
1: हमारे
0: के
1: साथ
0: साथ।
1: हैं अजीम शान और आलिया अंसारी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया।

0: प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। हेलो,
1: हेलो सोनिया मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो जी?
1: सुखबीर सिंह शाहजी बोलता मैम, संगरूर को।
0: जी सुखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी, फरमाइश
1: वाह
0: दस
1: जी
0: दियो।
1: वाह, पहुंच गई सदे तक, बहुत मुश्किल ना, वहां पहुंचना जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होंगी,
1: हां जी,
0: देखो।
1: सदा साथी जलंधर है जी, होर
0: हाँ जी,
1: घर बार छड़ दांगे, घर वालियां छड़ दांगे, बाल बच्चे छड़ दांगे, पर
0: नहीं
1: जलंधर
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं
1: छड़।
0: नहीं साडा जिहड़ा रेडियो है, आकाशवाणी
1: हां जी,
0: परिवार है, ये जोड़न का काम करता है, तोड़न का नहीं।
1: अच्छा जी, ना वो गल करदे हैं, कहने का मतलब प्यार बहुत ज्यादा है जलंधर
0: जी
1: नाल।
0: जी
1: हां
0: जी साडे
1: जी
0: सारे ही
1: हां
0: स्रोतियां दा साडे नाल इंदा ही प्यार बणिया रहे, यही दुआ करते हैं। ते ये दस दिओ, अज दी
1: जी,
0: फरमाइश केड़ी है जी?
1: मैंने नजरे मेरी दिल धड़का ओदा दे राजा मूवी दा।
0: ठीक है जी, लो जी सुनो फिर अपनी पसंद का गीत। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम, बाय।
0: बाय जी।

आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश। फरमाइशी सिलसिला जारी है जी। संबलपुर कांकेर तो सानू फरमाइश भेजी है फागू राम यादव, युद्ध ज्योति ते ओजस्वी यादव। उन्होंने मेरठ कैंट तो दिग्दर्शन कविता ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। पिंड चगुड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़, गुरमेजो गौरव, परवीन, युगम, वीरेन ते मनराज, जाकर मुलानी, सुमैया सुबान।

0: समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर ते इन्हां दे पूरा ही मुलानी परिवार सानू फरमाइश भेज रहा जी पंढरपुर तों। आओ सुनते हैं सारे की मिलीजुली फरमाइश ते मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ च।
1: चलो

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से

0: प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High-Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that

0: हेलो,
1: सर
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने? केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: सत श्री
0: सो बहुत बहुत स्वागत ठंडा साहब, पूरे ढोल ढमाके दे नाल स्वागत है।
1: अकाल।
0: हाँ जी, केड़ा गीत सुनाइए जी फिर। दस मैं की प्यार विचों खटिया। गल तां सही है, प्यार दे विचों कोई खटदा तां हुंदा ही नहीं, बस गवांदा ही हुंदा। हाँ जी, धन्यवाद जी कॉल करन दे लई। ते बस एक दो मैसेज पढ़ लीए फिर तुहाडा असीं गीत चलाउने आ। सो दोस्तों, ये सानू मैसेज मिलिया जी सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तों। टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका तों, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज कहिंदे ने कोई भी गीत सानू सुना दिओ। ते इह सानू श्री गुरु सर मोडिया, श्री गंगानगर राजस्थान तों, लवली ज्योति, सुखेंद्र ते संगम कहिंदे जी गुरदास मान ते गुरनाम भुल्लर दी, जां गुरनाम भुल्लर दी आवाज़ दे विच कोई भी गीत सानू सुना दिओ ते जरूर सुनाउने आ जी तुहानू।

मंडी हरजी राम मलोड़ तो नथू राम शर्मा, ललित शर्मा ते इंदराज शर्मा, सुरेश शर्मा कोई भी गीत कहिंदे सानू सुना दिओ ते जरूर। ते लो जी फिर सुनदे आं गीत।

0: हेलो, सत श्री अकाल जी।
1: जी सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
0: जी मैं कोड़े दिल्ली शहर दी।
1: आहा हा, क्या बात
0: है,
1: बोल
0: रही हां।
1: बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है जी।
0: अच्छा जी, थैंक यू।
1: ते मैं मुंडा जलंधरों बोलदा।
0: अच्छा जी,
1: ते दसो फिर
0: मुंडा जलंधर दे, कोड़े दिल्ली शहर दी।
1: हां जी बिल्कुल जी, दसो केड़ा गीत सुनाइए फिर। क्या बात है जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं ते केड़ी जगह
1: तो
0: बोल रहे हैं?
1: मैं
0: हाँ जी मंजीत जी, बहुत बहुत
1: बहुत
0: स्वागत है पूरे ढोल ढमके के नाल।
1: बहुत
0: हाँ जी
1: बहुत
0: हाँ जी, धन्यवाद जी। दसो
1: बहुत
0: केड़ा गीत सुनाइए जी,
1: टाइम चेक करा
0: केड़े कलाकार दा जी है?
1: नंबर की कह रहा सर।
0: लो जी धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: ओके सर, थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ जी, सत श्री अकाल भाजी। रणजीत
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: बोल रहा है, सुबह बॉर्डर साहब
0: सो बहुत बहुत स्वागत रणजीत जी, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है।
1: जिला पटियाला।
0: ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ?
1: ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ।
0: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ।

0: हेलो
1: कमल जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: देश राज ड्राइवर, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा तो।
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है जी।
1: थोड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो।
0: हाँ जी दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए। सो दोस्तों, सानू बहुत सारे मैसेजेस जड़े आ मिल रहे ने, और ये सानू मैसेज आया जी अंजू विनीपैग कैनेडा तो। ये कहंदे ने हाए दुध रुड़का कोई सोंग सानू कहंदे ने सुना दिओ, ते जरूर इन्हां नू असीं गीत सुनाने हैं। अगर साड़े को अवेलेबल होएगा तो जरूर सुनावांगे जी। नाल दी नाल हरजिंदर सिंह बराल VPO जेदा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो भी कहिंदे ने सानू कोई भी गीत सुना दिओ, तो जरूर आओ फिर इंजॉय करते हैं गुरनाम भुल्लर दा गीत।

0: हेलो
1: हेलो सर।
0: हेलो।
1: हेलो सर, सर
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं संतोष यादव और कॉलेज में से बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरे ढोल ढमक्के से स्वागत है।
1: स्वागत है सर। अमित सर, जो सर अपना नाम बोलिएगा सर।
0: कमल शर्मा बोल रहा हूँ जी, आप बताएं कौन सा सॉन्ग सुनेंगे आप?
1: सर मेरे को है ना सॉन्ग इतना है ना जो आपसे गिला शिकवा बहुत है। और मैं
0: आप
1: आपको
0: सॉन्ग बताइए जी, गिना शिकवा नहीं करना, सॉन्ग बताइए आप।
1: अपना दिल बहलाने के लिए संतोष बेचारा के दिल पे मत तीर चलाओ, ठीक है? कभी भी इंसान को सच्चाई पे चलना चाहिए कमल सर।
0: आप सॉन्ग बताएं जी, कौन सा सुनना है आपने?
1: ये सिली सिली औंधी हवा।
0: धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: सर जी, प्यार परी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने? केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: सुखदेव सिंह, बस्ती शेख, जन्नत नगर, जलंधर वालों सारे प्यार परी सत श्री अकाल जी।
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमके के नाल स्वागत। हाँ जी वीर जी, अपना
1: धन्यवाद जी।
0: रेडियो सेट थोड़ा हौली कर लो या उस तो थोड़ा दूरी बना लो।
1: नहीं, रेडियो तो मैं लाया ही नहीं,
0: हाँ विच डिस्टरबेंस आ रही थोड़ी जी, देखो कोई चीज़
1: पता नहीं,
0: चलती पई है।
1: पक्का चल रहा जी। सर
0: चलो एनी हाउ
1: जी,
0: दस।
1: दो को लाइना
0: हाँ जी सुनाओ जी।
1: ऐ साइया, मैं इस तन ते लखां दर्द हंडाए ने, सतो सुखां पासा वटियाए,
0: क्या बात है।
1: दुख बिना बुलाए आए ने। असी
0: हाँ जी,
1: जख्म फुलां तों खाए नहीं,
0: क्या बात
1: गैरां ने सानू की कहना, गैरां ने सानू की कहना, सुखदेव असी अपने भी अजमाए ने, असी अपने भी अजमाए ने।
0: क्या बात है। दसो जी फिर केड़ा गीत सुनाइए।
1: गीत सुनावे जी, आलम लोहार दा दिल वाला दुखड़ा।
0: क्या बात है, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए। एक दो
1: ओके
0: मैसेज पढ़ लिए फिर थोड़े गीत चलाने असीं।
1: ओके
0: सो मैसेजेस दी कड़ी सानू अंजू विनीपैग कैनेडा तो अपनी फरमाइश करते हैं। आशा भोंसले का गाया गीत वे दुध रिड़का, तो जरूर जी असी तुहाडी भी फरमाइश पूरी करांगे, पहले ये गीत असी सुन लीए। तो एक मैसेज सानू होर मिलिया जी, ये है चकला बाजार समाना तो, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता राणी जिंदल, पप्पू स्माइल खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल, पूरा ही खुशदिल परिवार। कहिंदे कोई भी गीत सुना दिओ ते लओ जी फिर गीत सुनते हैं।

0: जोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई भगवंत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसमीर सिंह।
1: सूही महला पंजवां। से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावै गुण सदा रसाला। रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करें बसै तिसनेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सुजाना। यह पावन पवित्र रचना धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उचारण कीती हुई सूही राग अंदर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 743 ते अंकित है। गुरु अर्जन देव जी बेनती करते हैं कि हे परमात्मा, जिमें तेरे भगत जन तेरे प्यारे तेरा नाम जपते हैं, मेरे ते भी कृपा कर, मैं भी तेरे गुण गाता रहा। तेरा नाम साडे वास्ते आत्मक जीवन है। जो भी मनुख जो भी प्राणी तेरा नाम जपता है, तू उन्हां दी रचना ते वसदा है। श्री सुखमनी साहिब बाणी अंदर फुरमान है, प्रभ जी वसै साध की रचना। तू आप ही अपने प्यारियां नूं नाम दी दात दे के आत्मिक तृप्ति दिंदा है, क्योंकि तू ही समर्थ है, नाम दी दात देन दे योग है। राग वढ़हंस की वार अंदर धन धन गुरु रामदास जी दे बचन हन, हर नाम हमारा भोजन, सत्ती प्रकार जित खाया हमको तृप्त पई। हे वाहिगुरु जी, तू ही नाम दी दात देन वाला है ते सारियां तो सियाणा है। विचार वाले फरमान दियां रहाओ वालियां पंक्तियां तो विचार आरंभ करते हाँ। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावै गुण सदा रसाला। रहाओ सुन बेनती का अर्थ है मेरी अरदास सुन। प्रभ तो भाव है हे प्रभु, दीन दयाला। दीन दयाला का अर्थ है दीना गरीबा उत्ते दया करन वाले। गावै गांदे हन रसाला रस भरे। गुरदेव फरमाउंदे हन हे दीना उत्ते गरीबा उत्ते दया करन वाले प्रभु, मेरी बेनती सुन। जिवें तेरे प्यारे जन सदा तेरे रस भरे गुण गाते रहिंदे हन,

0: सदा थिर रहन वाला सच है, तांते फिर उसनु ही मनना चाहिदा है। सबद ब्रह्म है, असरीरी है, पर ए सोजी तां ही आउंदी है जेकर अकाल पुरख दी बख्शिश होवे। सुनदे आ कंचन सोढ़ी होरां पासों वार्ता, गुर का सबद सत करमान।
1: गुरबाणी दा ए महावाक जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 897 ते सुभाए मान है। गुर का शब्द सत कर मान। पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी इस शब्द विच बख्शिश करदे हन कि उस गुरु जी दे दर्शना तों सदके जाईदा है, उस दे कमल रूपी चरणा नूं हिरदे विच वसाईदा है अते वड्डे पागा नाल ही उस दे नाम दे शब्द दी सूझ बूझ पैंदी है ते नाम दा वासा हिरदे विच हुंदा है। जिस गुरु नूं मिलिया मन विचों अहंकार दूर हो जावे ते परमात्मा सभनी थाई नज़र आवे। ओही कृपा करन वाला है, ओही सर्व थाई व्यापक है। गुरु जी दी शोभा करनी बनदी है। गुरु दा शब्द ही उस प्रभु दा नाम है। इस शब्द नूं मन विच वसाउणा बनदा है। गुरु दा शब्द ही गुरबाणी है जिहड़ी के धुर तों आई है। जिस तरह गुरबाणी विच फुरमान है, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। गुरु जी बख्शिश करदे हन कि हे प्राणी, तू सदा प्रभु दे गुण गाया कर, यही गुरु दी सब तों वड्डी भगती है। तू अपनी सुरत विच जे शब्द नूं वसा लिया तां तू गुरु नूं बहुत नेड़े करके जान लिया। गुरु नानक देव जी सुरत ते शब्द दा सुमेल ही सब तों वड्डा प्रभु दा सुमेल मनदे हन। शब्द विच ही समर्था है कि ओह मनुख दे सारे अवगुण बख्श के उस नूं गुणा दी कृपा करदा है। उस दे लोक ते परलोक सवारे जांदे हन, हालत ते पलत विच इज्जत बनदी है। हे भाई, गुरु ही परमात्मा दा रूप है, गुरु ही गोबिंद है, गुरु ही गुरबाणी है, यही निरंकार है। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोए, वाह वाह अगम अथाव है, वाह वाह सच्चा सोए। गुरबाणी विच गुरु नूं दाता दयाल बख्शिंद आख्या गया है अते जिस दे वड्डे भाग हुंदे हन उस दा ही मन गुरु चरणा विच लगदा है। श्री गुरु अमरदास जी श्री राग विच फरमाउंदे हन कि परमात्मा दी शरण गुरु दे शब्द राहीं प्राप्त हुंदी है। जदों गुरु दा शब्द हिरदे विच आ वसदा है तां परमात्मा हिरदे विचों कदे नहीं विसरदा। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਾਇਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਭਾਰ ਨਾ ਭਰਮ ਤਿਨਾਹ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾ

सतगुर सबद उजारो दीपा, बिन सो अंधकार तेह मंदिर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। इस शब्द का गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उनां दे रागी जत्थे ने।

सब जगत बन डारा राम बागे सब भांड है तुदे सड़िया।

0: सेब दवाई है,
1: सेब दवाई है, सेब दवाई है।
2: औड़ी दान महंडा तली खाक जे मेरे तमक तकलाई है, कूड़ा लाल छड़िया हो एक मन अलग ते आई है, पालते वे हो पाई है जो वे ही कर कमाई है, जे हो वे पुरुव लिखा ता धूड़ ती ना दी पाई है, मात थोड़ी से

0: पंडित हिकमत जसने करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवा वै मंगे मुख दुआ। जति सुदावे जुकना जाने छड बह है घर बार, सबको पूरा पे हो वह घट ना कोई आख है, पत परवाना पिछे पाइये तनान तुलिया जापे महला पहला।
1: वधी सुव जगनान का सच्चा वेखे सो, सबनी छाला मारियां करता करे सोए, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लिखे पत पवे।

सुख रोग पया जा सुखता न होई, तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात मह जोर जोत मह जाता कलकला भरपूर रहया।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ

ਹਰ ਨਾ

सतगुरु सतगुरु सतगुरु।

पौड़ी सतगुरु जी टोहवार जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश गए रंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे से मन जा रहा सतगुरै बोझता विलय किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार।